आकाशवाणी एफएम ठिंडा एफएम बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर ते अज दिन मंगलवार शक संवत 1948 दे हाड़ महीने दी 8 तरीक ते ईस्वी सन 2026 दे जून महीने दी 30 तरीक इस वेले 5:58 अते 28 सेकंड होए ने। हुण साडी अज दी प्रसारण सभा शुरू हुंदी ए। इस सभा विच सारे ही स्रोतियां दा बहुत बहुत स्वागत है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के

0: दो दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद। The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Minister of Petroleum and Natural Gas said that with effect from tomorrow, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets of public sector oil marketing companies. According to the statement, during the period of disruptions arising from the West Asia crisis, the government continued to shield retail consumers from the sharp increase in international fuel prices by maintaining stable retail prices of petrol and diesel. This led to a significant price difference between retail fuel prices and those applicable to bulk consumers. Union Information and Broadcasting Ministry has announced 2 major decisions aimed at boosting the Indian film industry. The decisions were taken at a high-level review meeting chaired by Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav in New Delhi yesterday. A high-level study group under the chairmanship of Prasar Bharati Chairman Prasoon Joshi has been formed, which will study the opportunities and challenges before Indian cinema. The ministry has also prepared a model state cinema regulations for adoption.

आकाशवाणी FM बठिंडा ते इस वक्त तुसी सर्वन कर रहे हो प्रोग्राम अमृत वेला।

0: आकाशवाणी FM बठिंडा 101.1 मेगाहर्ट्ज़ से तुसी सर्वन कर रहे हो प्रोग्राम अमृत वेला।
1: स्टूडियो की घड़ी ते समा हो रहा 6:46 अते 18 सैकेंट दा। ते आओ हुण सर्वन करदे आं भगती रचना अनुराधा पौड़वाल अते साथियां दीआं आवासां विच।

आकाशवाणी एफएम बठिंडा एफएम बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर ते स्टूडियो दी घड़ी ते समा हो चुका है ठीक 7 बजे दा ते हुण वेला है प्रोग्राम सजरी सवेर दा।

चार दिन है जिंदगी, हंसी खुशी में काट ले, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले, कुछ नहीं है साथ जाना एक नेकी के सिवा, कुछ नहीं है साथ जाना एक नेकी के सिवा, कर भला होगा भला गांठ में बांध ले। जी स्रोतों, मैं तो हमेशा ये कहनी है कि जिंदगी दे विच दुख सुख तो आउंदे ही रहिंदे है, ते जिंदगी चाहे हस के कट लो ते चाहे रो के, जिंदगी ने लंघ जाना तो फिर क्यों ना जिंदगी नूं आपां हस के लंघाईए। प्रोग्राम सज्जरी सवेर लैके हाजिर हो चुकी हूँ मैं आप सब दी रेडियो दोस्त सुखदीप। मेरे वालों सारे ही स्रोतियां नूं प्यार भरी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल ते वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं तुसी सारे तंदुरुस्त होवोंगे ते अपनी खूबसूरत जिही जिंदगी दा आनंद भी माण रहे होवोंगे ते नाल नाल अपने जिहड़े कम्मां कारां नूं निपटा भी रहे होवोंगे ते कई साडे जिहड़े कई

0: पेश है सबका फेवरेट
1: अर्क गुलाब अर्क केवड़ा चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार तन मन को ताजा कर जाए।
2: श्रोतियो आकाशवाणी एफ एम बठिंडा दे प्रसारणा बारे तुसी भी साडे नाल मशवरा कर सकते हो। तुसी अपने नेक सुझाव साडे नाल सांझे करन लई खत सानू लिख सकते हो। साडे पते इंचार्ज प्रोग्राम श्रोता मंच मार्फत केंद्र निर्देशक आकाशवाणी बठिंडा ते अते खतां दे नाल ही साडे वट्सएप नंबर 7171-7176 दे उत्ते भी वट्सएप सुनेहा सानू भेज सकते हो। इस दे नाल नाल तुसी चलदे प्रोग्राम विच 0164-2240-331 नंबर डायल करके भी अपने कीमती सुझाव साडे नाल सांझे कर सकते हो। सो जरूर सुनो आकाशवाणी एफ एम बठिंडा दा प्रोग्राम श्रोता मंच ते देओ अपने नेक सुझाव। प्रोग्राम दा समा हर मंगलवार दोपहर 1:15 to 2 PM तक अते शुक्रवार दोपहर 12:10 to 1:10 PM तक।
3: पुलिस
4: मिस सीमा।
3: हाँ जी।
4: हुणे पुलिस थाने आओ। रुको नहीं तां घर आ जावांगे। हां
3: क्यों? पर मैं
4: कल्ले दूजे कमरे विच जाऊं। तुहाडा बेटा साडी हिरासत विच है अते तुसी डिजिटल अरेस्ट विच हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
4: 1,00,000 दियो बच जाओगे।
3: इन्ने पैसे?
4: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजा है, हुणे प्रोसेसिंग लई 30,000 दियो, नहीं तां बेटा जेल जावेगा।
3: जेल तां तू जावेगा, तेरा चेहरा रिकॉर्ड हो गया है।
4: ओए
3: डिजिटल अरेस्ट जेहा कुछ नहीं हुंदा, ए सब फ्रॉड है, इसलिए घबराओ ना। पुलिस बैंक आरबीआई आदि दे नाम तो आने वाले साइबर अपराधियां दे फोन कॉल जा वीडियो कॉल तो सावधान रहो। उन्ना नु पैसा ना भेजो अते तुरंत पुलिस नु रिपोर्ट करो।
5: हेलो मम्मा।
3: हाय।
6: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनो सुचेत रहो।
7: जी श्रोतियो प्रोग्राम चल रहा है सर्जरी स्वेयर स्टूडियो की घड़ी ते समा हो चुका है 7:10-34 PM का। आओ हुण सुनदे आं प्रोग्राम सर्जरी स्वेयर के तहत हफ्तावारी लड़ीवार हड बीतियां जग बीतियां ते प्रोग्राम तहत कहानी पेश कर रहे ने कमलप्रीत कौर।

0: जी श्रोतिया, प्रोग्राम सर्जरी सवेर के तहत हुणे तुसी सुन रहे सी हफ्तावारी लड़ीवार हड बीतियां जाग बीतियां। प्रोग्राम तहत कहानी सुना रहे सन कमलप्रीत कौर। जिस रोते प्रोग्राम चल रहा सर्जरी सवेर स्टूडियो की घड़ी से समा हो चुका 7:37 और 42 सैकेंट का। मैं सुखदीप कौर बनी हुई हाँ तुहाडे नाल प्रोग्राम के तहत। कहिंदे ने कि ख्वाहिशां जरूरत अनुसार सानू जिंदगी जीनी चाहिए है, ख्वाहिशां मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरत फकीर की भी पूरी हो जाती है जदों की ख्वाहिश बादशाह की भी अधूरी रह जाती है।
1: सबका फेवरेट
2: अर्क गुलाब, अर्क केवड़ा, चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार, तन मन को ताजा कर जाए।

प्रोग्राम दे वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना भूलना, जिंदगी नू मुस्कुराहट दी नवी भाषा विच पढ़न लई मिति 1 जुलाई दिन बुधवार शाम 5 बजे प्रोग्राम अखर बोल देने।

0: इस गीते नाल ही प्रोग्राम सज्जरी सवेर इथे ही मैनू सुखदीप नू संपूर्ण करन दी देओ आ गया। प्रोग्राम नू तुहाडे तक पहुंचाउण लई तकनीकी टीम दा जिहड़ा धन्नवाद करना चाहवांगे। ते हुण मैनू सुखदीप नू प्रोग्राम इथे ही खत्म करन दी देओ इजाजत। धन्नवाद।
1: ਸੁਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਪਿਆਰੇ ਸਰੋਤਿਓ।

FM बैंड 101.1 MHz अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा दी प्रसारण स्टूडियो दी घड़ी मुताबक समा 7:59 ते 10 सेकेंड तुसी बने हो FM बठिंडा दी प्रोग्रामा नाल ठीक 8 बजे तुसी सुनोगे हिंदी विच खबरां दा बुलेटिन समाचार प्रभात 8:15 ते अंग्रेजी विच खबरां दा बुलेटिन आकाश मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तो 8:30 ते तुसी सुनोगे पंजाबी विच खबरां दा प्रसारण आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो खबरां लई करो कुछ पल इंतजार

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक की मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम

0: की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय आदिवासियों कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
2: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
3: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा

0: कि पाकिस्तान की कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन, व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों

0: में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है। ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
1: धन्यवाद सर फिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Center to withdraw temporary restrictions on sale and distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniform civil code in the state, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. Information and Broadcasting Ministry announces major decisions to boost Indian film industry. Delhi government clears electric vehicle policy. Cars under 30 lakh rupees to be exempted from road tax and registration fees. India strongly condemns Pakistan airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians and injured 163 others. US and Iran to hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve their dispute over Strait of Hormuz. And in football, Brazil enter round of 16 at the FIFA World Cup after 2-1 victory over Japan in Houston, US. The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said that with effect from the 1st of July, that is tomorrow, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets of public sector oil marketing companies. We have more from a correspondent.
3: According to the statement, during the period of disruptions arising from the West Asia crisis, the government continued to shield retail consumers from the sharp increase in the international fuel prices by maintaining stable retail prices of petrol and diesel. This led to a significant price difference between retail fuel prices and those applicable to bulk consumers. The ministry said that to address this situation, the temporary regulatory measures introduced on 12th of this month prescribed a temporary limit of 200 liters of high-speed diesel per consumer or vehicle per day at retail outlets and required industrial, institutional and commercial consumers. The measures were aimed at preventing black marketing, hoarding and diversion of fuel while ensuring uninterrupted availability of petrol and diesel to retail consumers. Following a review of the supply situation of petroleum products in the country, the government has concluded that the temporary regulatory measures are no longer required in the public interest. The temporary measures help ensure adequate availability of petrol and diesels across the country while safeguarding the interest of retail consumers. Their withdrawals reflects the improvement in the supply situation and the restoration of normal

0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में एक साल सिविल जाबता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सुवेंद्र अधिकारी ने विधानसभा में इस बारे ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बिल का खरड़ा 2 जुलाई नू राज कैबिनेट की मीटिंग में पेश किया जाएगा। इस मकसद लिए सेवा मुक्त सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस संजना देसाई की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी ब्याह तलाक और गोद लैंड समेत 9 विषयों का अध्ययन करेगी और 4 हफ्तों के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पट्टेदर्ज जातां कुर्मी और प्राचीन कबायली भाईचारा इस कानून के दायरे तो बाहर रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने भारतीय फिल्म सनत को उत्साहित करने लिए 2 अहम फैसले लिए ने। ये फैसले नवी दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की प्रधानगी हेठ हुई जायजा मीटिंग में लिए गए। इनका उद्देश्य भारतीय सिनेमा को विश्व पद्धर से वधेरे मुकाबलेबाजी वाला बनाना और फिल्म निर्माण लिए एक बेहतर माहौल सृजना है। सूचना ते प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती दे चेयरमैन प्रसून जोशी की प्रधानगी विच कुछ पदरी अध्ययन समूह का गठन किया है। यह समूह भारतीय सिनेमा के सामने आने वाले मौकों और चुनौतियों का अध्ययन करेगा और सनत को मजबूत करने लिए सिफारिशा प्रदान करेगा। मंत्रालय ने राज्यों लिए मॉडल राज सिनेमा नेम भी तैयार किए ने अते उन्हां नूं अपनाउण दी अपील कीती है। सरकार दा कहना है कि यह देश विच एक आधुनिक मजबूत अते विश्व पद्धर ते मुकाबलेबाजी वाली फिल्म सनत दे विकास नूं उत्साहित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज तो आंध्र प्रदेश के 2 दिन दौरे ते होणगे। दौरे दौरान राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश की केंद्रीय कबायली यूनिवर्सिटी और केंद्रीय यूनिवर्सिटी के पहले कन्वोकेशन समारोह में शामिल होणगे। 2020-2025-26 अकादमिक साल विचकार अपने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम पूरे करने वाले 373 विद्यार्थियों डिग्रियां प्रदान कीतियां जाणगियां। केंद्रीय सिख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ते कई होर पतवंतियां दे इस समारोह विच शामिल होण दी उम्मीद है। कल राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश की केंद्रीय यूनिवर्सिटी दे पहले कन्वोकेशन विच शामिल होण लई अनंतपुर जाणगे। ए खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा xandla@eirrn जलंधर। भारत ने पाकिस्तान वालों अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों विच कीते गए हवाई हमलों की सख्त निखेधी की है, जिस विच औरतां ते बच्चों समेत 36 नागरिक मारे गए और 163 होर जख्मी हो गए ने। एक बयान विच विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान वालों कीता गया एक घिनौना हमला अफगानिस्तान की प्रभुसत्ता ते हमला है ते खेतरी शांति ते स्थिरता लई सीधा खतरा है। यह पाकिस्तान के लापरवाही भरे विहार ते निरंतर पैटर्न ते अपने सरहदां तों पार हिंसा दीआं हताश कारवाइयां राहीं अंदरूनी नाकामयाबियां नूं बाहर कढ़ण दी व्यर्थ कोशिश नूं दर्शाउंदा है। भारत ने अपने अजीजा नूं गुआ देण वाले अफगान परिवार प्रति अपनी संवेदना प्रगट कीती है अते जख्मियां दे जल्दी ठीक होण लई प्रार्थना कीती है। भारत ने अफगानिस्तान दी प्रभुसत्ता अते खेतरी अखंडता लई अपने अटल अहद नूं वी दोहराया है। खेतीबाड़ी अते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान अज हरियाणा दा दौरा करनगे अते खेत बचाओ अभियान दे समाप्ति समारोह विच शामिल होणगे। खेतीबाड़ी मंत्री किसानां नाल सिद्धे तौर ते गल्लबात करनगे। श्री चौहान खेतीबाड़ी मॉडलां ते आधुनिक खेतीबाड़ी ढंग तरीकियां मिट्टी दे प्रबंध फसल सुरक्षा पशु पालन अते देहाती उपजीविका दीआं पहलकदमियां दा विखाला करन वाले स्टॉलां वाली इक नुमाइश दा वी दौरा करनगे। दिल्ली सरकार ने एक नवी इलेक्ट्रिक वाहन नीति नो मंजूरी दे दिती है। इस नीति तहत 30 लाख रुपए तक दियां इलेक्ट्रिक कारां नो रजिस्ट्रेशन फीस अते रोड टैक्स तो छोट दिती जाएगी। पुराने वाहन नो स्क्रैप करन अते एक नवा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदन लई 1 लाख रुपए की रकम भी दिती जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि यह नीति अगले 4 सालां विच पड़ावार लागू की जाएगी जो कि 1 जुलाई तो शुरू होगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली नु प्रदूषण मुक्त ते कार्बन निकासी मुक्त शहर बनाना है।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: सेहत मंत्रालय ने सारे केंद्रीय सरकारी विभागों के संस्थावां नूं आवारा कुत्तियां दे हमलों संबंधी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की पालना नूं यकीनी बनाने के निर्देश दिए ने जो अज तो लागू होणगे। सारे संबंधित विभागों नूं एक तय समा सीमा के अंदर दिशा निर्देशों नूं लागू करने

अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हो आप पे निसार। हाँ बचपन हो खुशगवार, जवानी स

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए श्रेया घोषाल और जावेद बशीर की आवाजों में प्रसून जोशी का लिखा और शंकर एहसान लॉय का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम है भाग मिल्खा भाग।

दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म। ये दिवस प्रतिवर्ष 30 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोकतंत्र, संसद की भूमिका तथा जनप्रतिनिधियों के उत्तरदायित्व के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। 30 जून 1989 को अंतर संसदीय संघ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना हुई थी। इसी अवसर की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2018 से इस दिवस को मनाने की घोषणा की। लोकतंत्र में संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था होती है।

संसद कानून बनाती है, सरकार के कार्यों की समीक्षा करती है, राष्ट्रीय नीतियों पर चर्चा करती है तथा जनता की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाती है। एक सशक्त संसद ही पारदर्शी, उत्तरदायी और जनहितकारी शासन की आधारशिला भी होती है। संसद महिलाओं, युवाओं और समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करती है तथा संवाद, सहमति और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत बनाती है। तो चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको गाना सुनवा रहे हैं हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान की आवाजों में पिंटू की पप्पी फिल्म से।

0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए भूमि त्रिवेदी और साथियों की आवाजों में कौशल मुनीर का लिखा और अमित त्रिवेदी का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम है रश्मि रॉकेट।

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए मीका सिंह की आवाज में शुभ मंगल ज्यादा सावधान। इस फिल्म का गाना लिखा है वायु ने और संगीतबद्ध किया है तनिष्क वायु ने।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूर नहीं रह सकता एक बिन, तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: और अब आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लक्ष्मी फिल्म से, इसे गाया शशि और डीजे खुशी ने, गगन आहूजा के शब्द हैं और तर्ज बनाई है शशि डीजे खुशी ने।

0: mente, Jamila.
1: इस गाने के साथ ही आज का चित्तलोक कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: चले।
1: लेकिन कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में ज्यादा जिक्र तो कल्याण जी का होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये बात कल्याण जी और आनंद जी पर केंद्रित रहेगी।

कल्याण जी भाई दोनों भाइयों में सबसे बड़े हैं। 1929 में उनका जन्म हुआ था, जबकि आनंद जी का जन्म कच्छ में सन 1933 में हुआ था। मजे की बात यह है कि आनंद जी तो बचपन में कच्छ गुजरात में रहे, लेकिन कल्याण जी मुंबई में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने चले आए। आगे चलकर इनका परिवार मुंबई आ गया। दोनों भाई चाल के अपने घर में पड़ोसियों के घरों में रेडियो सुना करते थे, क्योंकि रेडियो तब एक लग्जरी हुआ करता था और सबके घरों में रेडियो नहीं होता था। जब घर में ग्रामोफोन आया तो दोनों भाई मिलकर सुरेंद्र, शांता आप्टे, कुंदनलाल सहगल और पंकज मलिक के गीतों को बड़े चाव से सुना करते थे। सन 1954 अचानक कल्याण जी वीर जी शाह शोहरत की ऊंचाई पर पहुंच गए। दरअसल शशधर मुखर्जी की फिल्म नागिन में उन्होंने संगीतकार हेमंत कुमार के निर्देशन में क्ले वॉयलिन पर बीन की आवाज निकाली थी। ये अपने आप में एक करिश्मा था, क्योंकि इससे पहले फिल्म संगीत में जब भी बीन के सुर सुनाई पड़ते थे तो वो असली बीन होते थे, लेकिन इस बार वाद्य बदल गया था और सुर कुछ तरोताजा हो गए थे।

इस गाने के वादक, जी हाँ वादक यानी म्यूजिशियन कल्याण जी को बड़ी प्रसिद्धि मिली। कल्याण जी वीर जी शाह ने बतौर अकेले संगीतकार फिल्म सट्टा बाजार में भी संगीत दिया था। अभी तक आनंद जी उनके साथ नहीं आए थे।

0: के जाना।
1: सन 1958 में निर्माता निर्देशक कीकू भाई देसाई ने दोनों भाइयों को सम्राट चंद्रगुप्त नामक फिल्म में बतौर स्वतंत्र जोड़ी पहला मौका दिया। हम आपको बता दें कि कीकू भाई मनमोहन देसाई के पिता थे।

दिलचस्प बात यह है कि मनमोहन देसाई ने सन 1960 में जब छलिया फिल्म बनाई तो भी कल्याण जी आनंद जी को मौका दिया। छलिया का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय हुआ।

सन 1964 की बात है। मनोज कुमार फिल्म उपकार बना रहे थे। उनकी इच्छा थी कि इसका संगीत शंकर जयकिशन दें, लेकिन इस जानी मानी जोड़ी के बीच तनाव चल रहा था, इसलिए बात कुछ बनी नहीं। लेकिन जयकिशन ने कल्याण जी आनंद जी के नाम की सिफारिश मनोज कुमार से की।

कार वो फिल्म है जिसने कल्याण जी आनंद जी को शंकर जयकिशन के प्रभाव से मुक्त किया। यहाँ से वो संगीत आया जिसमें रिदम का अनूठा पैटर्न था।

सिने संगीत के कद्रदान केवल रिदम और अरेंजमेंट को सुनकर कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का फर्क समझ लेते हैं।

ढोल, ताशे और बांसुरी और साथ में ग्रुप वायलिन, सब कुछ कल्याण जी आनंद जी के संगीत में अनूठा और निराला है।

कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये गाना मेरे छोटे भाई आनंद जी ने कई सालों पहले हिंदी ओजी का लिखा हुआ वो तैयार करके रखा हुआ था। तो मनोज जी नए नए डायरेक्टर हुए थे, उपकार पिक्चर बना रहे थे, तो उनको ये गाना बहुत पसंद आ गया। उन्होंने बोला कि कन्हैया जी भाई ये गाना मेरे लिए रख लीजिए, मैं उपकार फिल्म में प्राण जी के पास गाऊंगा। तो हमने सोचा कि ये उसको उस टाइम प्राण जी फिल्मों में गाया नहीं करते थे, तो हमने सोचा कि बिल्कुल नए डायरेक्टर हैं और शायद हमें भी नए कर देंगे। लेकिन मनोज जी ने उपकार फिल्म में वो गाना प्राण जी से इतना अच्छा गवाया और प्राण जी ने भी इतना अच्छा गाया है कि जब अपन फिल्म देखते हैं तो लगता नहीं है कि किसी प्लेबैक सिंगर ने ये गाना गाया होगा। बिल्कुल प्राण जी ऐसी इसी तरह गा रहे हैं कि जैसे वो ही गा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली गाना मन्ना डे जी ने गाया हुआ है।

मुकेश और कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने कुछ बड़े अद्भुत नगमे दिए हैं। दरअसल शंकर जयकिशन के बाद अगर मुकेश की प्रतिभा को किसी ने पहचाना तो वो कल्याण जी आनंद जी ही थे।

तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। आपको शायद मालूम होगा कि ये गाने के लिए हम लोगों को सिने म्यूजिक डायरेक्टर का फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था। और मुझे एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई भी गाना मैं जब अनाउंस करता हूँ तो सब लोग चाहते हैं कि इसके साथ कोई हंसी मजाक जरूर होनी चाहिए। तो इसमें तो सही वाक्य हो गया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि मुझे एक दिन एक ये गाना रिकॉर्ड होने के बाद किसी एक लड़की का फोन आया कि भाई हमें आपका मैं तो एक ख्वाब हूँ ये गाना बहुत पसंद आया और मैं चाहूंगी कि आपके मुंह से ये गाना सुनूं। तो हमने उनको म्यूजिक हॉल पे बुला लिया, तो एक दफे सुनाया। उसके बाद फिर वो 2-4 दिन के बाद आई कि मुझे हमें ये फिर गाना सुनाइए। तो 3-4 दफे उन्होंने जब हमसे सुना तो मैं उनके सामने देख रहा था। तो बाद में 4th दफे जब मैंने ये गाना सुनाया तो मैंने ये गाना बोला कि मैं तो एक बाप हूँ, इस बाप से तो प्यार न कर, क्योंकि उसकी निगाहों से लग रहा था कि इसमें और कुछ चक्कर है।

0: कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत को मिला दिया। वे प्रगतिशील संगीतकार थे। प्रगतिशील इस मायने में कि उन्होंने संगीत के बने बनाए ढर्रे को तोड़ा, लगातार नए प्रयोग किए, नई ध्वनियां अपने संगीत में पिरोई और बनाया अद्भुत संगीत।
1: ढोल बजा

चाहे उदास नगमा हो या ढमाढम संगीत, कल्याण जी आनंद जी की कोई सानी नहीं। आइए कुछ उदास नगमे सुने जाएं इस संगीतकार जोड़ी के।

0: फिल्म समझौता।
1: समझौता गमों से कर लो जिंदगी में।
2: समझौता गमों

से कर लो जिंदगी में कम भी मिलते हैं। ये गाना मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं, उन्होंने एक दिन मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दिया। मैं बोले किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं आप? तो बोले भाई आपका मैं गाना लेके गया था और उससे मेरा एक पेशेंट बहुत अच्छा हो गया। मतलब गाने से पेशेंट अच्छा हो गया? बोले आपके गाने के कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि उसकी लाइफ में कुछ चेंज आ गया। तो अरे सही वाक्य है कि अगर इस गाने को आप करेक्ट कोई मीनिंग समझे तो जिंदगी की काफी उलझने कम हो जाती है।

0: था।
1: आपको ये जानकर अचरज होगा कि कल्याण जी आनंद जी की इस सदाबहार और सुपरहिट जोड़ी को जीवन में केवल एक बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1974 में ये फिल्म थी कोरा कागज। कल्याण जी आनंद जी की संगीत यात्रा इतनी लंबी है कि आधे घंटे के सीमित समय में हम सिर्फ ऊपर ऊपर से उनके सफर पर नजर डाल सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये जोड़ी लगातार हिट संगीत देती रही, लगातार लोगों के दिलों पर राज करती रही।

कल्याण जी आनंद जी की ये जोड़ी टूट गई है। टूटना शायद आपको सही शब्द ना लगे, ये जोड़ी एक दूसरे से बिछड़ गई है। आज कल्याण जी नहीं है लेकिन आनंद जी हैं, और है इस जोड़ी का अनूठा

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

वो दिल ही क्या जो वफा ना करे, वो दिल ही क्या जो वफा ना करे, तुझे भूल कर जीऊं खुदा ना करे। रहेगा तेरा प्यार जिंदगी बनकर, रहेगा तेरा प्यार जिंदगी बनकर, वो बात और है जिंदगी वफा ना करे। जी श्रोतियों, प्रोग्राम गीत पिटारा लेके हाजिर हो चुकी हूं मैं आप सब दी रेडियो दोस्त सुखती। मेरे वालों सारे ही श्रोतियों नु प्यार भरी नमस्कार। अज के प्रोग्राम गीत पिटारा के तहत सुनावांगे तुहानू सदाबहार हिंदी गीत। ते आओ फिर करते हैं प्रोग्राम का आगाज लता मंगेशकर की आवाज़ विच गाए इस खूबसूरत जिहे गीत दे नाल। गीत लिया गया है फिल्म आपके साथ दे विचों। गीत रचना आनंद बख्शी दी ते संगीत दिता है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

प्रोग्राम दे वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना भूलना, जिंदगी नू मुस्कुराहट दी नवी भाषा विच पढ़न लई मिति 1 जुलाई दिन बुधवार शाम 5 बजे प्रोग्राम अखर बोल देने।

जी श्रोतियों, प्रोग्राम गीत पिटारा दे तहत हुणे तुसीं सुन रहे सी कुमार सानू अते साधना सरगम दीआं आवाज़ां दे विच सैनिक फिल्म दा एक गीत रचना सी समीर दी ते संगीत दित्ता सी नदीम श्रवण।

तू साथ हो तो हर गम आसान है, तेरे बिना लगे सब कुछ वीरान है। तू हो तो लगता है जन्नत जहां, तू हो तो लगता है जन्नत जहां, बस तुम पे बसा है हर एक अरमान मेरा। जी श्रोते हो, आओ सुनते हैं प्रोग्राम गीत पटारा दा अगला गीत। उदित नारायण, अलका याग्निक अते साथियां दियां आवाजां दे विच ये गीत लिया गया है फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा दे विचों। गीत रचना समीर दी ते संगीत दिता है अनु मलिक ने।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रूपये तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। ये आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश और विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भाग लेने का भी कार्यक्रम है। इसके बाद श्री चौहान पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कल श्री चौहान अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। वे प्रभावित किसानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर राहत कार्यों का जायजा लेंगे। सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी संघर्ष विराम के बाद हो रही है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानू के बलिदान का स्मरण किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मोरक्को, ब्राजील और पराग्वे फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी और आकाशवाणी के एफएम रेनबो 102.6 पर एक बार फिर से आ गई हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त एंड होस्ट रॉकिंग रश्मि। प्रोग्राम है वही आपका जाना पहचाना बॉलीवुड ट्रेल्स, जिसमें लेकर आते हैं हम ढेर सारी बातें। कहाँ की? हमारी फिल्मी दुनिया की, वो फिल्मी दुनिया जिससे हम बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं। हमें एंटरटेनमेंट की फुल डोज मिलती है और साथ साथ ये जानने का मौका मिलता है कि भाई फैशन इंडस्ट्री में नया क्या हो रहा है, और साथ साथ हमारी जो सेलिब्रिटीज हैं फिल्मी दुनिया की, बॉलीवुड की, वो क्या कर रही हैं, कौन सी नई फिल्म आने वाली है, किस फिल्म का क्या हश्र होगा और कौन सी फिल्म का पोस्टर रिलीज हो चुका है या फिर टीजर रिलीज होने वाला है, और खास तौर पे फिल्म की रिलीज कब होगी, ये सारी की सारी बातें लेकर आपके साथ हूँ आज मैं, आपके अपने प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स में। मैं कौन हूँ? मैं हूँ आपकी अपनी रॉकिंग रश्मि और प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेल्स।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: बॉलीवुड ट्रेल्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं, आपकी अपनी रॉगिंग रश्मि, और बात कर रहे हैं आज हम किसकी सबसे पहले। जी हाँ, टॉक्सिक। टॉक्सिक का मालूम है ना आपको, टॉक्सिक रिलीज हो चुकी है, माफ कीजिएगा, टॉक्सिक का अगले महीने यानी कि अगस्त के महीने में रिलीज होने वाली है, लेकिन उससे पहले लोगों को इंतजार है इस फिल्म का काफी हद तक। और खास तौर पर अब कहना ये है देखने वालों का कि इसके जो विजुअल्स हैं वो काफी अच्छे हैं। अब आप कहेंगे देखने वाले कौन है जब फिल्म रिलीज ही नहीं हुई है। भाई रिलीज इसलिए नहीं हुई है क्योंकि अभी बिल्कुल लास्ट उसका जो पोस्ट प्रोडक्शन काम है वो चल रहा है, और खासतौर पे फिल्म की जो एक्ट्रेस है ना हुमा कुरैशी, ये बात है उनकी, यानी कि हुमा कुरैशी ने फिल्म का पहला रिव्यू दे दिया है। वो कहती है कि भाई मैंने अभी 8-9 मिनट का एक कट देखा है इस फिल्म का, और खासतौर पर जो इसके विजुअल्स हैं वो होश उड़ाने वाले हैं। कहती हैं कि फिल्म पे काम काफी हद तक दिन रात चल रहा है, और मैं वाकई में अब यश की और भी ज्यादा बड़ी फैन हो गई हूँ, क्योंकि पहले मुझे ये लगता था कि इनकी ना फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, और शायद इसीलिए लोग एक आध फिल्म देखकर इनके काफी इम्प्रेस हो गए हैं इनसे, और इसीलिए इनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है। लेकिन जब मैंने इनके साथ में काम किया है और इनके काम के जज्बे को देखा है, तब से मैंने उनसे ना केवल बहुत कुछ सीखा है बल्कि समझ में आया है कि वाकई में ये बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। और हाँ, वो उनकी काफ़ी अच्छी फैन हो गई हैं, और ख़ास तौर पे यदि फिल्म की बात करें तो उनका ये मानना है कि भाई पिक्चर बहुत ही अच्छे से आएगी, और जब आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि वाकई में यश ने बहुत जबरदस्त कमाल किया है, और फैंस के लिए एक अच्छी ट्रीट होने वाली है टॉक्सिक। हालांकि ये फिल्म जो है 26 अगस्त को रिलीज होने वाली है, और कोशिश ये की जा रही है कि 3 जुलाई को भी कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, 26 जुलाई को ये फिल्म रिलीज होगी। लेकिन हाँ, हुमा कुरैशी की एक और फिल्म है बेबी डू एंड डाई, ये फिल्म 3 जुलाई को रिलीज होगी। अब हुमा कुरैशी तो हो गई है खुश टॉक्सिक का थोड़ा सा कट देखकर, लेकिन हम कब खुश होंगे जनाब? हम तब खुश होंगे जब इस फिल्म का टीजर या ट्रेलर हमारे सामने होगा, और हम देखेंगे एक जबरदस्त अलग से अंदाज में किसको, हमारे यश को।

बेकसी ने मारा ये गाना कौन सा था भाई? ये था टॉक्सिक फिल्म से। हालांकि फिल्म में आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे पुराने गाने एक नए अंदाज में सुनाई दिए, उन्हीं में से ये एक ट्रैक था। आपने बहुत एंजॉय किया होगा फिल्म को, और मुझे लगता है जिस तरह से धुरंधर को लोगों का काफी प्यार मिला ना, तो यश की टॉक्सिक को भी काफी प्यार मिलने वाला है। लेकिन साथ साथ मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे भी आपका बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, क्योंकि लेकर आई हूँ आज मैं आपके लिए क्या, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत सारी बातें, बहुत सारी नई नई जानकारियां। खास तौर पे बात करूंगी अब मैं किसकी, बात करूंगी सनी देओल साहब की। भाई सनी देओल की जो नेक्स्ट फिल्म है उसके ट्रेलर ने गर्दा उड़ा दिया है। जी हाँ, फिल्म का ट्रेलर की बात करें, किस फिल्म की, तो ये है इक्का। 10 जुलाई को रिलीज होने वाली है और ट्रेलर जो है 29 जून को आप ऑलरेडी देख चुके हैं। और खास बात ये है कि इसमें अक्षय खन्ना एक जबरदस्त डैशिंग रोल में है, और हमारे सनी देओल साहब एक बार फिर से हैं एक वकील के रोल में। याद आया आपको कुछ? जी हाँ, बहुत समय पहले एक फिल्म आई थी मीनाक्षी शेषाद्री सनी देओल की, साथ में थे ऋषि कपूर, और उस फिल्म के साथ जो सनी देओल साहब थे उन्होंने एक एडवोकेट का, एक वकील का रोल निभाया था। हालांकि थोड़ा सा उनका उसमें नेगेटिव सा एक इम्पैक्ट भी था स्टार्टिंग में, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आगे जाके फिल्म में अपने रोल को निभाया और लोगों को इम्प्रेस किया ना, ले गए साहब वो नेशनल फिल्म अवार्ड। तो बता दूं उस फिल्म का नाम, चलिए बताऊंगी बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है हमारे सारे लिसनर्स अच्छे से समझ गए हैं कि वो कौन सी मूवी है। लेकिन अब उसी तरह से एक जबरदस्त रोल में, एक वकील के किरदार में सनी देओल आ रहे हैं इक्का में। ट्रेलर में आपने देखा होगा एक अलग अंदाज में आपको नजर आएंगे। तो बस आज के लिए सनी देओल के लिए इतना ही बात करेंगे, लेकिन सुना रही हूं आपको उन्हीं की फिल्म का एक प्यारा सा ट्रैक। एंजॉय कीजिए और वापस आइए बॉलीवुड रील्स में, यहां पर कर रही हूं मैं आपका इंतजार बहुत सारी खबरों के साथ।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
5: जी हाँ, रेनबो डेस्टिनेशंस पर आप सुन सकते हैं कोई एक खास डेस्टिनेशंस, लेकिन फिलहाल जो आपका डेस्टिनेशन है वो है बॉलीवुड ट्रेल्स एफएम रेनबो 102.6 पर, जिस पर हम बात कर रहे हैं आने वाली फिल्म इक्का की। 29 साल के बाद ये दोनों जो सुपरस्टार हैं अक्षय खन्ना और साथ में सनी देओल, ऑडियंस के लिए लेकर आ रहे हैं एक डियो। जी हाँ बिल्कुल, काफी लंबे समय से इस कोलैबोरेशन का इंतजार हो रहा था और आखिरी बार यदि बात करें तो ये दोनों नजर आए थे 1997 की बॉर्डर में। लोगों को बहुत इंतजार था, फैंस को बहुत ज्यादा इंतजार था कि ये दोनों एक बार फिर से काम करें। और देखिए ना, इस बार जब इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है 29 जून को, तो ट्रेलर में अक्षय खन्ना और सनी देओल की तारीफ हर कोई कर रहा है, जमकर इनके डायलॉग्स जो हैं वो पसंद किए जा रहे हैं। और खास तौर पे ना, इतने लंबे समय के बाद सनी पाची को इस अवतार में देखकर, यानी कि एक वकील के रोल में देखकर ना, लोग काफी एक्साइटेड हैं। और अक्षय खन्ना को तो आपने देखा ही ना पीछे धुरंधर में, उन्होंने क्या धुरंधर एक्टिंग की है और क्या धुरंधर तारीफें मिली हैं उन्हें ऑडियंस के, और उसी तरह के एक दमदार रोल में वो नजर आएंगे काम में। और इनके साथ साथ कौन है फिल्म में ये भी मैं आपको बता देती हूँ, दिया मिर्जा, तिलोत्मा शोम, आकांक्षा, रंजन कपूर भी नजर आएंगी। और खास बात ये है कि जब आपने ट्रेलर देखा होगा ना, तो ट्रेलर में आपने कोर्टरूम ड्रामा के साथ साथ इमोशनल और थ्रिलिंग मोमेंट्स की भी झलक देखी। और यदि आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा है तो बिल्कुल आप जाइए और आपको कहीं ना कहीं ये ट्रेलर जरूर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जल्दी ही फिल्म रिलीज होने वाली है। और उससे पहले जब ट्रेलर ऑडियंस की एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है ना, तो बस वो फिल्म को बहुत ऊंचे पायदान पर पहुंचा देता है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बॉलीवुड रील्स, अपनी होस्ट एंड दोस्त रॉकिंग रश्मि के साथ।

वेल, आपके साथ भी ऐसा ही है क्या? क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है और यदि आप भी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं कि बेगानी शादी में आप अब्दुल्ला बनके पूरी तैयारी के साथ जुट गए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और भूल गए हैं इस बीच कि आपका जरूरी कोई असाइनमेंट भी होना है, भाई कॉलेज भी जाना है या फिर ऑफिस जाना है और बॉस की डांट खाने का मेल बिल्कुल भी नहीं है आपका, तो बहुत ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो कि बेगानी शादी के चक्कर में आप अपना नुकसान कर लें। खैर, हमारे जो लिसनर्स हैं ये भी मुझे पता है कि बहुत प्यारे हैं और इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर आज बॉलीवुड सरताज के लिए रश्मि क्या क्वेश्चन लेकर आए हैं। बाकी मैंने एक चीज और नोटिस की, हमारे जो लिसनर्स हैं ना बहुत ज्यादा

स्मार्ट है, बहुत ध्यान से प्रोग्राम को सुनते हैं। उसका रीजन क्या है और वो कैसे मुझे पता चला, ये मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर के बाद। लेकिन फिलहाल मैं लेकर आई हूं आपके लिए वो प्यारा सा सवाल जिसका सही जवाब देकर आप बन सकते हैं हमारे बॉलीवुड सरताज। तो तैयार हो जाइए और अपने मोबाइल फोन्स का जो व्हाट्सएप बॉक्स है ना वो खोल लीजिए, एफएम रेनबो वाला, जिसका नंबर है 9868107070। और आज का सवाल सुन लीजिए जल्दी से। इक्का जो रिलीज होने वाली है, इससे पहले सनी देओल ने किस सुपरहिट फिल्म में एडवोकेट का रोल प्ले किया है जिसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। जल्दी से बता दीजिए इस फिल्म का नाम, अपने नाम, अपने शहर के नाम और अपने फोन नंबर के साथ लिखकर भेज दीजिए हमारे पास 9868107070 पर।

0: जी हाँ, इश्क भी सतरंगा है और हमारी जो चैनल है ना वो भी सतरंगा है, यानी FM रेनबो है। और रेनबो पर हम लेकर आते हैं आपके लिए रेनबो सारी, बहुत सारी, ढेर सारी जानकारियां हमारी बॉलीवुड की। और आज जो बॉलीवुड की मैं आपको अगली जानकारी देने वाली हूँ वो है फिल्म कौन सी भाई, जूनियर NTR की जो नेक्स्ट फिल्म है ना गॉड ऑफ वॉर, उसके लिए इंतजार है फैंस को बहुत ज्यादा। हालांकि बीच बीच में खबर आई थी कि 20 मई को इनके बर्थडे पर ये फिल्म के बारे में कोई ना कोई अनाउंसमेंट जरूर होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन अभी रिसेंटली फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं नागा वामसी, उन्होंने एक पोस्ट डाली है जिसमें उन्होंने क्लियर तो नहीं लिखा है कि वो गॉड ऑफ वॉर की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि फाइनली कल वो दिन आ रहा है जिसका मुझे सबसे ज्यादा इंतजार था। साथ में एक इमोजी भी शेयर की है और लोगों ने ये अनुमान लगाया है कि भाई ये जो अपडेट है ना काफी हद तक हो सकती है इसी फिल्म की गॉड ऑफ वॉर की। ये फर्स्ट लुक पोस्टर भी हो सकता है, टीजर भी हो सकता है, किसी खास किरदार की या किसी खास एक्टर या एक्ट्रेस की एंट्री की अनाउंसमेंट भी हो सकती है। तो फिलहाल ये जो अटकलें हैं अटकलें हैं, लेकिन जल्द ही मुझे उम्मीद है कि इस फिल्म से जुड़ी कोई ना कोई और अपडेट भी आपको जरूर नजर आएगी। फिलहाल मैं आपको अपडेट कर रही हूँ एक छोटे से कमर्शियल के साथ, और उसके बाद एक बार फिर आपको याद दिलाऊंगी कि आज का ताजा तरीन सवाल बॉलीवुड सरताज के लिए क्या है। बने रहिए हमारे साथ प्रोग्राम बॉलीवुड रील्स में।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओ हो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल है।

जी हाँ, और ऐसी ही दोस्ती है आपकी और हमारी, और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें इस प्रोग्राम में। एक मैसेज हमने आपसे मांगा है, बहुत ही आसान सा, और उसमें आपको ये लिखना है कि आंसर लिखना है बॉलीवुड सरताज का, है ना। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, वो कौन सी फिल्म है जिसमें पहली बार, या ये कह सकते हैं इक्का से पहले वो कौन सी फिल्म है जिसमें सनी देओल ने एडवोकेट यानी वकील का किरदार निभाया है, और उस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। जल्दी से लिखकर भेजिए सही जवाब, अपने नाम, अपने शहर के नाम के साथ, और साथ में अपना फोन नंबर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि तभी हम आपसे बात कर पाएंगे, है ना। अब जो मैं आपको खबर देने वाली हूँ ना, वो है YRF के बारे में। अब YRF यानी कि यशराज प्रोडक्शंस के बारे में, और उनकी जो नेक्स्ट स्पाई यूनिवर्स

जो फिल्म आ रही है एल्फ हाउस को लेकर एक अच्छी स्ट्रैटेजी वो बना रहे हैं। आलिया भट्ट और शर्वरी जोशी स्टारर इस फिल्म के बारे में, मेकर्स ये चाहते हैं कि रिलीज के बाद ना पहले ही जो वीकेंड है उस पर ज्यादा से ज्यादा लोग सिनेमाघरों तक पहुंचे, और इसके लिए उन्होंने टिकट प्राइजिंग को और शो टाइमिंग्स को लेकर ना खास इंस्ट्रक्शन दिए हैं। वो चाहते हैं कि एल्फा के मॉर्निंग शोज सुबह 9:30 बजे से शुरू कर किए जाए ताकि फिल्म को ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन और ज्यादा से ज्यादा शोज मिले, और जिसका सीधा असर ना इसके बॉक्स कलेक्शन पर होगा, क्योंकि उनका ये मानना है कि यदि शुरुआती वीकेंड में ज्यादा शोज हो जाएं तो फिल्म की कमाई को तगड़ा शुरुआत मिलता है और साथ में तगड़ा रिस्पॉन्स मिलता है। और इसके लिए उन्होंने चाहा है कि 2 स्क्रीन वाले जो सिनेमाघर हैं उनमें 4 शो हो जाएं, 3 स्क्रीन वाले में 6 मिले कम से कम, 4 वाले में कम से कम 8 हो, या फिर 10 से ज्यादा स्क्रीन वाले थिएटर में 10 शो तो जरूर होने चाहिए। अब देखिए ना इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन जो टीम है वो कितनी जबरदस्त काम कर रही है ताकि फिल्म को अच्छे से अच्छा प्रमोशन मिले, अच्छी से अच्छी उनको ओपनिंग मिले और लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाए शर्वरी जोशी और आलिया भट्ट की एल्फा। क्या आपको भी इंतजार है इस फिल्म का? इंतजार है तो जरूर बताइए, लेकिन साथ साथ बताइए हमारे बॉलीवुड सरताज क्वेश्चन का सही जवाब भी, अपने नाम, अपने शहर के नाम और अपने फोन नंबर के साथ उसे भेज दीजिए 9868107070 पर।

घुंघरू टूट गए लेकिन किसी का दिल नहीं तोड़ने वाले हैं हम, क्योंकि लेकर आए हैं आपके लिए एक और जबरदस्त खबर. अब आप कहेंगे रश्मि वो क्या है, तो वो ये है कि हम आप सबकी जो फेवरेट है, इवन मेरी भी बहुत फेवरेट है, बहुत प्यारी, बहुत स्वीट और बहुत ही खूबसूरत है रश्मिका मंदाना. और खास बात अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ, इनकी जो इनकी जो 6 फेमस पॉपुलर फिल्म्स है ना, वो अब OTT पर उपलब्ध हैं. और आपने यदि अभी तक नहीं देखी है ना, और आपको लगता है कि भाई पता नहीं ये सारी साउथ की एक्ट्रेसेस अब क्यों बॉलीवुड में आने लगी हैं, तो भाई प्लीज ये फिल्म्स देखने जाइए, देखिए जरूर OTT पर किसी ना किसी तरीके से, जब भी आपको टाइम मिले, यदि आपका थोड़ा सा भी मन करे तो जरूर आप देखिए. और तब आपको पता चलेगा कि एक्ट्रेस एक्ट्रेस होती है, वेदर शी इज फ्रॉम साउथ इंडस्ट्री, वेदर शी इज फ्रॉम हॉलीवुड इंडस्ट्री, और अपनी बॉलीवुड की तो है ही है. यदि हम फिल्मों की बात करें तो वो कौन कौन सी फिल्म्स हैं, तो मैं सबसे पहले आपको बता रही हूं कि एनिमल, पुष्पा द राइज यानी कि पहली वाली पुष्पा, साथ में सीता रामन, डियर कॉमरेड, वारिसु और मिशन मजनू. ये 6 फिल्म्स आप देख सकते हैं OTT पर. और खास बात ये है कि आपकी हिंदी में भी ये उपलब्ध है, आपकी अपनी जो भाषा है हमारी हिंदी उसमें भी उपलब्ध है, पर आप आराम से वहां पे जाएं और जब भी आपको टाइम मिले अपने फ्लेक्सिबल टाइम्स के हिसाब से आप देख सकते हैं इसे OTT पर. और फिर आप हमें बताइएगा कि भाई आपको वाकई में रश्मिका मंदाना अच्छी लगी या नहीं लगी, है ना. और मुझे पूरी उम्मीद है आपका जवाब होगा हाँ भाई हाँ, हमें बहुत अच्छी लगी. और अब जल्दी से ये बता दीजिए कि आपने अभी तक हमारे बॉलीवुड सरताज क्वेश्चन का सही जवाब भेजा है या नहीं. नहीं भेजा है तो आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, आज का हमारा सवाल ये है कि वो कौन सी फिल्म है जिसमें सनी देओल ने एडवोकेट का किरदार निभाया है टिल नाउ, अभी तक कौन सी ऐसी फिल्म है और जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था.

जी हाँ, और अब वक्त आ गया है ये बताने का कि आज के हमारे बॉलीवुड सरताज कौन बने हैं। तो भाई आज के हमारे बॉलीवुड सरताज हमारे सारे लिसनर्स बने हैं, और खास तौर पे वो दो लोग जिन्होंने ना क्वेश्चन पूछने से पहले ही आंसर दे दिया था। जी हाँ, वो बिल्कुल समझ गए थे कि मैंने उस फिल्म का नाम उस टाइम क्यों नहीं बताया था, और उन्होंने तुरंत उसका नाम लिखकर भेज दिया था। शायद वो ये बात बिल्कुल समझ गए थे कि आज मैं आपसे यही सवाल पूछने वाली हूँ। तो ये है मोहम्मद इम्तियाज और सलमा बेगम, जवाहर कैंप कीर्ति नगर नई दिल्ली से इन्होंने लिखकर भेजा है। और साथ में हमारे एक और लिसनर हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम शायद कहीं खो गया है। इनका नाम खो गया है भाई, इन्होंने वो आई थिंक उन्होंने दोबारा मैसेज जरूर लिखा होगा, इसीलिए उनका नाम कहीं और चला गया। इसके अलावा बहुत सारे लिसनर्स हैं जिनके सही जवाब आए हैं। सबसे पहले हैं सलीम मलिक मेरठ यूपी से, रोहित श्रीवास्तव ने दिल्ली से लिखा है, प्रवीण चौहान है खरगोन मध्य प्रदेश से, बिल्कुल सही जवाब है। और जवाब है फिल्म दामिनी, जिसके लिए सनी देओल को मिला था नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का। अरुण सेन ने जिला थार मध्य प्रदेश से बिल्कुल सही जवाब लिखा है, पंकज ने अमरावती से, ललित ने नोएडा से लिखा है सही जवाब। और इसके अलावा हरीश गौड़ है मेरठ से, राजकुमार संतोषी की फिल्म थी 1993 की दामिनी, बिल्कुल सही जवाब इन्होंने लिखकर भेजा है। और आई थिंक इन्हीं यही हमारे सेकेंड थे कि जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब लिखा था, लेकिन इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। नौशाद चौधरी ने लिखा है कहाँ से, मंडोली दिल्ली से। इसके अलावा दामिनी सही नाम लिखकर भेजा है, एकता नरूला ने पंचकुला से, बसंत उमर ने मेरठ से, दानिश ने खतौली से, और भी हमारे बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है, आसिफ सैफी मेरठ से, अर्चना राजपाल मुखर्जी नगर दिल्ली से, इमरान बिहार भागलपुर से, और बहुत सारे लिसनर्स हैं। दोस्तों आप सबका नाम लेना थोड़ा सा आज मुश्किल हो रहा है क्योंकि समय बहुत थोड़ा सा बचा है, लेकिन आपको बता दूं कि 1 बजे आपसे मेरी फिर मुलाकात होगी रेनबो हेल्पलाइन में, और कोशिश करूंगी कि तब आप सभी के मैसेजेस मैं जरूर ले सकूं। लेकिन आज का प्रोग्राम होगा बहुत खास, रहेगा हमारे साथ उस प्रोग्राम में भी, यदि आप चाहते हैं CUET के द्वारा एडमिशंस लेने दिल्ली यूनिवर्सिटी में और जानना चाहते हैं कोई भी सवाल, तो आप रहिएगा रेनबो हेल्पलाइन में हमारे साथ।

0: खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे के क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कल श्री चौहान अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। वे प्रभावित किसानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर राहत कार्यों का जायजा लेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से इस्तीफा देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि 4 दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक स्तर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरन ने बताया कि हवाई हमलों में 36 नागरिक मारे गए हैं और 163 अन्य घायल हो गए हैं, साथ ही 3 आवासीय मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया, सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारत ने अपना मानवीय सहायता अभियान और तेज कर दिया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता, आपात राहत सामग्री और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी नोटिस का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगों वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेच रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में IOCL ने कहा कि ये दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। घरेलू शेयर बाजार के आज के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 38 अंक गिरकर 76,690 और निफ्टी 13 अंक गिरकर 23,933 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Athens-headquartered Eurobank has launched the UPI-based remittance service for cross-border transfers from Greece to India.

प्रोग्राम दे वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना भूलना, जिंदगी नू मुस्कुराहट दी नवी भाषा विच पढ़न लई मिति 1 जुलाई दिन बुधवार शाम 5 बजे प्रोग्राम अखर बोल देने।

प्रोग्राम घर परिवार सुन रहे तमाम श्रोतियां नूं मेरे वल्लों प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल ते आदाब। मैं सीमा कटारिया हाजिर हाँ अज दा इह प्रोग्राम घर परिवार लैके।

0: पेश है सबका फेवरेट
1: अर्क गुलाब अर्क केवड़ा चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार तन मन को ताजा कर जाए।
2: प्रोग्राम संबंधी एक जरूरी सूचना। मिति 1 जुलाई 2026 दिन बुधवार दोपहर 1:15 ते प्रोग्राम हैलो फरमाइश के तहत तुसी सुनोगे सिलसिला फिल्मी अफसाने और तराने जो कि आधारित होवेगा फिल्मी एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री ते। प्रोग्राम दे तहत वाचन ते संपादन रहेगा सीमा कटारिया दा। प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। सो सुनना ना भूलना 1 जुलाई 2026 दिन बुधवार प्रोग्राम हैलो फरमाइश दे तहत सिलसिला फिल्मी अफसाने और तराने।

0: अर्क केवड़ा चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार तन मन को ताजा कर जाए।
1: 1966 तो चल रही नैक तो दूजी वार ए ग्रेड अते यूजीसी तो ऑटोनोमस स्टेटस का दर्जा हासिल करने वाली शहर दी एक लौती नामवर संस्था एसएसटी गर्ल्स कॉलेज बठिंडा विच चल रहे कोर्सेज बीए बीकॉम बीएससी मेडिकल नॉन मेडिकल सीएसएम बीसीए बीबीए बीलिब पीजीडीसीए पीजीडी इन योगा पीजीडी इन बैंकिंग अते इंश्योरेंस पीजीडी इन वेब डिजाइन एमए इंग्लिश हिंदी अते पंजाबी एमकॉम एमएससी मैथ्स एमएससी आईटी एमबीए एमसीए एमएससी फैशन डिजाइनिंग अति 4 साला बीए बीएड आईटेप विच दाखला शुरू है। आधुनिक सहूलता वाला होस्टल कंपटीशन सेल एनईपी अनुसार 3 अति 4 साला यूजी प्रोग्राम्स हर वर्गले स्कॉलरशिप स्कीम्स वधेरी जानकारी ले एसएसटी गर्ल्स कॉलेज अमरीक सिंह रोड बठिंडा विखे विजिट करो। कॉन्टैक्ट नंबर 94171 9191 94175 57848 98720 65150।
2: पेश है सबका फेवरेट
0: अर्क गुलाब अर्क केवड़ा चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार तन मन को ताजा कर जाए।
3: स्टूडियो की घड़ी मुताबिक समा 12:42 22 सेकेंड का जारी है प्रोग्राम घर परिवार ते आउन सुनते हैं प्रोग्राम घर परिवार के तहत सिलसिला शुरलियां। श्रोतियां नूं दस दिए कि प्रोग्राम सिलसिला शुरलियां दे तहत भाग लैण वाले कलाकार ने बबली दा किरदार अदा करनगे ममता अरोड़ा डॉली दी भूमिका दे विच ने सीमा मेहरा। आओ सुनदे हां अज दा इह प्रोग्राम।
4: प्रोग्राम शुरलियां
5: की गल डॉली इन्ना सोहना तैयार शार होई पई है तेरे चेहरे ते तेरे हवाइयां उड्डियां पई है गल की होई सुख ता है
6: सुखी है की दसना तुहानू बबली सिस मैं
5: ना दसना ता वी दस दे नहीं दसना ता वी दस दे एवे दिल हल्का हो जूगा।
6: ओ नहीं नहीं तुसी तुहानू ही दसूंगी होर मैं किनू दसा मेरे नाल ते धोखा हो गया।
5: ओहो धोखा ते तेरे नाल ते ओ कौन कर गया होया की जल्दी दस।
6: तो सुनो फिर साडे सीगा रिश्तेदारां दे विआह उन्हां ने किसे फंक्शन ते नहीं बुलाया सानू।
5: अच्छा यानी के विआह हाथ लाना हल्दी मेहंदी विआह किसे ते नहीं सद्या।
6: ना बिल्कुल नहीं ते मेनू सिर्फ उन्हां ने बुलाया रिसेप्शन ते।
5: अच्छा रिसेप्शन दा कार्ड आया।
6: हां बिल्कुल ते मैं क्या मैं जाऊंगी रिसेप्शन ते मैं इन्ना तैयार होके जाऊंगी सारे रिश्तेदार साड़ रहे ने मैं विच सोने दी अंगूठी आपदी ते मैं सवाया एक सोना जा देखो जेड़ा पा रखे सूट ए सवाया मैं।
5: आई हाय सूट ता तेरा बाबा महंगा है
6: ते होर सोने दी अंगूठी बेच के जो बनवाया है।
5: अच्छा फिर होया की
6: किराए ते कितनी वड्डी सारी गड्डी।
5: हाय वे मेरे रब्बा ओ भी लोकां नूं विखाण वास्ते
6: ते फिर साड़ने नहीं सी रिश्तेदार
5: ते फिर सड़े।
6: सुन लो अगो मेरी गल ता पूरी सुनो पार्लर तो होई मैं तैयार मैं वड्डी गड्डी च बैठी जदों असी गए ते अगो गली सीगी बहुत पीड़ी जी उठे साडी गड्डी वड़ी नी।
5: हां जदों एडी वड्डी गड्डी किराए ते करके गई सी लोकां नूं साड़न वास्ते ओ गली च जानी किथे सी गड्डी ता तू करती होनी है बाहर खड़ी बेचारी किसी ने वेखी भी नहीं होनी।
6: बिलकुल ते असी तुर के गए सारी रिश्तेदारां दे घरे जदों मैं रिश्तेदारां दे घरे पहुंची बाहर लग्या होया सी ताला।
5: है ना रिसेप्शन ते ताला किवें लग सकदा।
6: बस यही गल ते मैं सामने दुकान वाले नु पुछी कि किधर गए ताला क्यों लग गया इना दे करे अज ता इना दी रिसेप्शन है।
5: फिर अगले ने की किया।
6: ओ कहंदा अगो ना ना भैन जी अज थोड़ी रिसेप्शन है। मैं क्या अज। ओ कहंदा भैन जी अज नहीं मैं क्या अज रिसेप्शन। फिर ओने मेनू क्या कहंदा भैन जी छोजे कोल कार्ड हैगा ते मैं कढ़िया कार्ड ते मैं दिखाता ओनू। ओ कहंदा भैन जी रिसेप्शन ता 6

0: देखो पब्लिसिस, मेरे भी दिन आउणगे, तुसी हमेशा मेरी बुराई काटदे रहंदे हो।
1: ना ना, मैं बुराई कदों कीती? पता है मैनू, लै दिन तां सब दे बदल दे।
0: बिल्कुल यही मैं कह रही हां, जदों

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी चंचल शर्मा तों प्रदेशक खबरां सुनो। सरकार ने पेट्रोल ते डीजल दी विक्री अते वंड नूं नियंत्रित करन वाले अस्थाई नेमबंदी उपावां नूं वापस लैण दा फैसला कीता है। पेट्रोलियम ते कुदरती गैस मंत्रालय ने कहा है कि 1 जुलाई तों जनतक खेतर दे तेल मार्केटिंग कंपनियां दे परचून आउटलेट राही मोटर स्पिरिट अते हाई स्पीड डीजल तों अस्थाई उपा हटा दिते जाणगे। देश पेट्रोलियम उत्पादां दी सप्लाई स्थिति दा जायजा लैण तों बाद सरकार ने यह नतीजा कढ़िया है कि जनतक हित विच अस्थाई नेमबंदी उपावां दी हुण जरूरत नहीं है। केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेतीबाड़ी खेतर दे विकास तो बिना विकसित भारत का सुपना साकार नहीं हो सकता। अज हरियाणा दे हिसार च खेत बचाओ अभियान दे समाप्ति समारोह नूं संबोधन करदे हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक

0: सुरीली दोपहर पेश किया गया, वो भी बढ़िया लग गया, पर अफसोस के मेरा नाम मैसेज विच नहीं पढ़िया गया। ऐतवार नूं लेट्स रॉक एंड डांस जिहड़ा प्रोग्राम सी जी, इन्हां नूं वो भी वधिया लग्या। ते अगे लिख रहे ने, इसे ही दिन घर परिवार भैणा दी पसंद दे गाने तहत फोन कॉल्स ते आधारित प्रोग्राम सी, पर किसी वजह कारण फोन ते कॉल नहीं हो रही सी।
1: नहीं,
0: हाँ, व्हाट्सएप
1: बिल्कुल
0: प्रोग्राम पेश किया गया।
1: जी
0: ममता मैम उस दिन मैं ड्यूटी ते सी, ते
1: जी
0: फोन दी खराबी करके
1: मैं भी
0: ही
1: सुन रही
0: एट
1: सी प्रोग्राम
0: टाइम ही फैसला लिया भी खत्म ते किया जावे।
1: जी।
0: ते मनप्रीत वालों भी ये प्रोग्राम पेश किया गया, पर अफसोस उसने भी मेरा मैसेज कहते नहीं पढ़िया, ते मेरी पसंद विच ही रह गई।
1: जी
0: पर मैं मैसेज करने कहते नहीं हटना, क्योंकि मैं तुहाडी रेगुलर श्रोता हाँ। कई ऐसे श्रोते हैं जिन्हां दे मैसेज हर प्रोग्राम में शामिल किए जाते हैं, फोन
1: जी
0: कॉल भी अटेंड होंगे ने। ये मैं कई अः अगे पता नहीं की लिख रहे ने जी, ये मैं कई ए अच्छा ये कहते मैं कोई गिला शिकवा नहीं कर रही, पर सब दे मैसेज पढ़ने चाहिए ने। हेलो फरमाइश विच मेरा मैसेज नहीं पढ़िया गया, घट्टो घट 6-7 महीने हो गए ने जी। सोमवार को सवेरे गीत पटारा वधिया लग्या, सोमवार को ही दीपा छाबड़ा वालों जिहड़ा 12 तो लैके 2 बजे तक प्रोग्राम सी दोपहर का, वह भी वधिया किया गया।
1: वाह जी वाह, बहुत सोहना खत लिखिया। सब तो पहला बड़े ही ज्यादा डिटेल्स दे विच लिखिया, जिन्ने प्रोग्राम तुसी पसंद कीते उस दे लई बहुत बहुत शुक्रिया। हुण रह गई गल जिहड़े नवे अनाउंसर्स दी, जिहड़ा कि जिवें पिछला श्रोता मंच मेरे नाल मनप्रीत मैम ते जसविंदर मैम ने कीता, तुसी हौसला अफजाई कर रहे हो नव्यां दी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि सुखजीत मैम मेरी तां गल हैगी आ कि हर कोई परफेक्ट नहीं हुंदा, गलतियां असीं वी करदे आ, और गलतियां जिहड़े आने वाले जिहड़े नवे अनाउंसर्स वी करनगे, करदे रहेंगे, असीं भी करते रहेंगे, साडा हक भी है। तां उम्मीद करते हैं जी कि इस दीयां गलतियां नूं जिहड़ियां उह नजरअंदाज करके साडी मेहनत नूं जरूर देखणगे। तां नव्यां दी हौसला अफजाई लई शुक्रिया
0: जी। खाते ना जे पूरा नहीं होया, डायरी दे पूरे 3 पेज वरते हुए आ।
1: कोई गल नहीं जी, आन दिओ सिर मत्थे।
0: अगे लिखदे ने कहिंदे प्रोग्राम थोड़ा जिहा प्रोग्राम तहत अच्छा अगे इन्होंने कहा जी, अज मंगलवार सवेरे गीत पटारा सुखदीप ने पेश किया, बहुत ही वधिया लग्या। शुरलिया प्रोग्राम भी इन्होंने सुनिया, इन्होंने वह भी बहुत चंगा लग्या। तुहाडे सारे ही प्रोग्राम कहते बहुत वधिया लगते हैं, सारे अनाउंसर भैणा ते वीर बहुत वधिया प्रोग्राम पेश करते हैं, नवे अनाउंसर भी वधिया तरीके नाल प्रोग्राम पेश करते हैं। शुरलिया प्रोग्राम विच ममता अरोड़ा बबली वालों लो कर लो घ्यो नूं भांडा, अते सीमा मेहरा वालों डॉली वालों भी मैनू भी दसो मैनू भी दसो, ते बबली सिस ते बीबो सिस जदों कहा जांदा है तां बहुत ही हासा आउंदा है। कुल मिला के प्रोग्राम सारे ही वधिया चल रहे ने जी।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया। ते जिहड़ियां तुसी खत एक तां मेहनत करके 3 पेज भर के जदों तुसी लिखदे हो, सारी पता भी लगदा कि हां तुसी कल्ला ये नहीं कहा कि सानू सारे प्रोग्राम चंगे लगदे आ, नाल ये भी दस्सिया कि तुहानू वो प्रोग्राम क्यों चंगा लगदा है। ये गल सानू बहुत वधिया लगदी है, तां ही साडी हौसला अफजाई हुंदी है। सुखजीत मैम जिवें इन्हां ने प्रोग्राम सुनिया, इन्हां ने कहा कर लो घ्यो नूं भांडा या डॉली सिस बीबो सिस, ते वधिया लगदा है। इत्थों पता लगदा कि प्रोग्राम बड़े ध्यान नाल सुनते हैं।
0: बिल्कुल जी,
1: इस दे लई तुसी बहुत बहुत तुहाडा शुक्रिया। हाँ एक चीज तुसी एक गल लिखी कि साडा जिहड़ा नाम नहीं पढ़िया गया, एक गल असीं भी मन्ने कि खत बहुत सारे आए हुंदे ने ते कई वारी नाम पढ़िया नहीं जांदा, पर उस दे लई भी तुसी कोई गिला शिकवा नहीं कीता, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੱਗੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਖਤ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਖਤ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।
0: ਬਾਕੀ ਮੈਮ ਤਾਂ ਮੈਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖਤ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਉੱਪਰ ਉਹੀ ਸਰੋਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨੰਬਰ ਉਹੀ ਬਲਿੰਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸੂਝਵਾਨ ਸਰੋਤੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਫੋਨ ਕਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ,
1: ਫੋਨ ਕਾਲ
0: ਏਦਾਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ।
1: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਜੀਤ ਮੈਮ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰੋਤਾ ਮੰਚ ਚ ਖਤ ਭੇਜ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਸ ਕਾਲ ਤੇ ਮਿਸ ਕਾਲ, ਮਿਸ ਕਾਲ ਤੇ ਮਿਸ ਕਾਲ,
0: ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖਤ ਭੇਜ
1: ਖਤ ਭੇਜ ਤਾਂ ਪੜ ਦੋ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਈਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਰਕਾਈਵ ਚ ਪਾ ਦਈਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੋਨ ਡਿਸਟਰਬ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ।
0: ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੌਕ ਲਿਸਟ ਚ ਪਾ ਦਾ
1: ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਖੋਲ ਵੀ ਦਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਕਾਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੀਮਾ ਜੀ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਰਤਾ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦਾ। ਹੈਲੋ,
2: ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
0: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ?
2: ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ।
0: ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ। ਢਿੱਲਮਾ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਜ
1: ਵੈਸੇ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ।
2: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਮਤਾ ਮੈਡਮ ਜੀ।
1: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

0: उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी बीएलओ विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 बीएलओ पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र बीएलओ को वापस करें ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर बीएलओ और बीएलए 2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत आईएनएस देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
3: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने के स्टूडेंट्स

0: जिनको आज डिग्री मिल रही है, उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है। पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सैक्रिफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया, जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
3: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ERNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय

0: सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
1: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हुणे तुसी सुन रहे सी हिंदी विच खबरां आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तो। तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्रसारण। FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज ते स्टूडियो दी कड़ी मुताबिक समा 2:30 ते 10 सकिंट दा है। ते हुण सुनदे हां एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग। इस प्रोग्राम दे स्पॉन्सर ने NCERT। अज तुसी इस प्रोग्राम दा एपीसोड नंबर 1317 सुनोगे।

0: तो हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
3: आंगन का पेड़ घर की शान, देता है छाया, सुख और सम्मान।
1: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार। आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
3: संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।

0: जय मार्कंडेय जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान। ये भी जानिए मैं लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल। सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
1: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
0: और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
1: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ,
1: इतिहास की, भूगोल की, साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी, सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं, लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम हैं।
1: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला?
0: विमलेश जी, वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ।
1: जी,
0: जरा सोचिए तो, क्या उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल पाता?
1: जी सचमुच, कोयला, लोहा, तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए। तो श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ खनिज पदार्थों की। लेकिन अजीत जी, पहले ये तो जान लें कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं।
0: जी, ये तो हमें जानना ही चाहिए। देखिए, खनिज शब्द संस्कृत के खनि शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है धरती या धरती के भीतर का भंडार। इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है।
1: जी श्रोताओं, खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं।
0: जी, तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं?
1: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है।
0: जी, हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता कैसे है।
1: अजीत जी, एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ।
0: जी जी।
1: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं, वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पतियों और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है। यानी कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है।
0: जी, ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई, लेकिन ऐसा कैसे? जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
1: जी श्रोताओं, आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे। चारों ओर जंगल ही जंगल थे, दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
0: जी श्रोताओं, भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए।
1: जी,
0: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए। इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया, जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए, इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही।
1: समय बीतता गया, ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रहीं, नीचे दबे जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा। कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया।
0: जी विमलेश जी, इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं। श्रोताओं, दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है, वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है। यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
1: जी बिल्कुल सही। पर अजीत जी, अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए। वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है?
0: विमलेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं। प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है।
1: जी, तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी

0: के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात यह है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
1: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही। इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
0: जी
1: तो श्रोताओ, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: आप सोशल मीडिया पर भी, यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम सीखो।
0: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ।
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
3: फूलों से नित हंसना सीखो,
2: भौरों से नित गाना,
3: भौरों से नित गाना,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
3: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: सीखो शीश झुकाना,
3: सीखो शीश झुकाना,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
3: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: कोमल भाव बहाना,
3: कोमल भाव बहाना,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
3: दूध तथा पानी से सीखो,
2: मिलना और मिलाना,
3: मिलना और मिलाना,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
3: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
3: सूरज की किरणों से सीखो,
2: जगना और जगाना,
3: जगना और जगाना,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
3: लता और पेड़ों से सीखो,
2: सबको गले लगाना,
3: सबको गले लगाना,
2: दीपक से सीखो जितना,
3: दीपक से सीखो जितना,
2: हो सके अंधेरा हरना,
3: हो सके अंधेरा हरना,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
3: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
3: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: सच्ची सेवा करना,
3: सच्ची सेवा करना,
2: जलधारा से सीखो आगे,
3: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
3: जलधारा से सीखो आगे,
2: जीवन पथ में बढ़ना,
3: जीवन पथ में बढ़ना,
2: और धुएं से सीखो हरदम,
3: और धुएं से सीखो हरदम,
2: ऊंचे ही पर चढ़ना,
3: ऊंचे ही पर चढ़ना।
1: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोताओ, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी,
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था, अपने जंगल में खोदेंगे तालाब बड़ा सा।
3: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल। खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल।
2: बारिश का मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी।
3: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल।
4: बस अब थोड़ी देर करें आराम, फिर निपटाए जाए बाकी काम।
5: राजन, अभी बहुत सा काम बचा है, जल्दी निपटिए जाए, यही अच्छा है।

0: बारिश जाने कब हो जाए खत्म, जल्द खोद लें ताल, काम करें खत्म।
1: ठीक कहा हाथी तुमने, तो यही करो यही करो।
2: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक ताल, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
3: गाँव गाँव गाँव, सब पशु पक्षी आओ आओ आओ, गाँव गाँव गाँव।
4: कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे, क्यों है ना कोयल बहन? कू कू।
5: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता। कू कू।
6: मेरा भी कुछ यही हाल है।
3: तो ये बात है, अच्छा बात मेरी तो मानो, करो वही जो करना जानो, काम काम काम।
5: क्या
6: क्या
5: क्या?
3: ऊंचा सब तक कोयल गाए,
5: कू कू।
3: नीचा सब तक सांप सुनाए, सबका तुम दो जोश बढ़ाना, तुम सब में उत्साह जगाना, काम।
1: हाँ हाँ, यही करो तुम दोनों।
5: जो आज्ञा महाराज।
7: दम लगा के कू।
6: हईशा।
7: दम लगा के कू।
6: हईशा।
3: सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे पपीहा कहाँ है? आ, करता होगा पड़ा आराम, चलूं उसे भी ले आऊं मैं, ताल खोदना बहुत जरूरी, चलकर उसको समझाऊं मैं, काम काम काम काम काम काम। लो ये रहा पपीहा चुप्पा, बैठा गाल फुला कर कुप्पा, काम काम काम। अरे पपीहे, ऐसे क्यों बैठा है भैये, सारा जंगल झूम रहा है, अरे तू कैसा दुख मना रहा है, काम काम काम।
6: तंग मत कर तू मुझको कौवे, जा जा जा मुझसे बतियाने से पहले, अरे तू मुंह तो धोकर आ।
3: काँ, काँ, काँ। मुंह भी धोकर आऊंगा मैं, पानी भी पीऊंगा जी भर, सबके संग मिलता लखोदने, मैं भी मदद करूंगा डट कर। अरे पपी है, अरे पपी है, तुम भी चलो कुछ मदद करो।
6: ताल खोदने में इस जंगल में खुदेगा तालाब, अरे वाह जनाब, ताल के अंदर मिट्टी होगी, पानी भी गंदा ही होगा, छी छी कौन पिएगा उसको, अरे काले कौवे मुझको बख्शो।
3: काँ, काँ, काँ।
8: कौवा मदद मांगने आया, पपीहे ने डांट कर उसे भगाया, रिमछिम रिमछिम बरखा आई, पपीहे ने झूम कर गाया।

0: पानी पपी हाना पिए दूजा पानी, हाँ हाँ पपी हाना पिए दूजा पानी, पपी हाना पिए दूजा पानी।
1: इसने तो बस रट ही पकड़ ली।
2: भौ भौ भौ, अरे ये कौवे का मजाक उड़ा रहा है।
1: अरे
2: अरे ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा। भौ भौ, कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं।
1: गाँव गाँव गाँव, कुत्ते देख नहीं रहे, शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं। अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे। गाँव गाँव शेर महाराज, अब बहुत हो गया ये सब, आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते।
3: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ। पपीहे सुन, पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का, सबकी मेहनत से खुद कर जो बना, अभी तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी।
2: इसकी यही सजा हो,
4: इसको यही दंड दो।
5: अब गर्मी का मौसम आ गया था, नदी नाले सब सूखने लगे, भयंकर लू चलने लगी, जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के। सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे।
1: गाँ, गाँ, अरे वो देखो, वो दूर के किसी जंगल से नील गाय आ रही है। गाँ।
6: हाँ, और किसी जंगल में पानी नहीं है ना, सारे जानवर यहीं आ रहे हैं, भयानक गर्मी है ना।
7: भाई मैं तो ठहरा कछुआ, दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
1: अरे कछुए भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ
7: हाँ, कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
6: क्यों नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब।
1: खाओ, खाओ, खाओ।
6: तुम हंस क्यों रहे हो कौवे, क्या मैंने गलत कहा?
1: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोच कर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे।
6: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है। वैसे वो क्या करता है आजकल, इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका?
7: मैं भी हैरान हूँ, कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है रोने जैसे गाने की।
1: काँ, काँ। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: लग रही है।
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपी हैं के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था। आओ कोयल, चलो चले
0: चलो।
2: कोयल रानी चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।
0: हाँ, चलो।
3: पिए दूजा पानी, कब आएगी बरखा, कब बरसेगा पानी।

0: जाए, बिन बारिश बिन पानी, बिन बारिश बिन पानी।
1: क्या ये मर गया?
2: क्या पता,
1: अभी अभी जान है लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
2: हाँ, चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
1: हाँ ये ठीक रहेगा।
2: पपी है, अरे देखो तो हम आए हैं तुम्हें लेने। बाहू कमुआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
3: पानी,
2: अरे
1: पपी है भाई।

0: सखी सहेली
1: सभी सखी सहेलियों और सखाओं को राजुल का नमस्कार और साथ में है सोनाली, आपको भी नमस्कार।
2: राजुल जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को

0: सखी सहेली
1: सभी सखी सहेलियों और सखाओं को राजुल का नमस्कार और साथ में है सोनाली, आपको भी नमस्कार।
2: राजुल जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। क्या हाल चाल है राजुल जी?
1: बस बढ़िया है, आप सुनाइए कैसे हैं?
2: मैं भी बहुत मजे में हूँ। और ये जो बारिश है ना,
1: हाँ,
2: ये किसी छोटे नटखट बच्चे की तरह हो गई है। बीच में से झमाझम बरस जाती है और फिर चुपचाप से छुप जाती है, तो इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो हम फिर परेशान हो जाते हैं, और जब हम परेशान होते हैं तो फिर से झमाझम बारिश हो जाती है।
1: तो ये कहो ना कि दरअसल ये जो बारिश है वो आपको परेशान नहीं देख सकती, बस जैसे ही परेशान देखती है कि अरे सोनाली परेशान हो रही, तुरंत आ जाती है। वैसे एक बात बताएं कि हमारे वो मित्र जो कि हमसे दूर हैं, जहाँ पे अभी बारिश नहीं शुरू हुई है, उनके लिए ये चीज बड़ी ही सुन के उनको बहुत वो होता है कि यहाँ तो बहुत तेज गर्मी पड़ रही है और बारिश तो हो नहीं रही है, तो उनको ये बात सुन के बड़ा ही अजीब सा लगता है। लेकिन भाई जहाँ बारिश हो रही है और जहाँ बारिश नहीं हो रही है, वहां पर भी बारिश शुरू हो जाए हम तो यही कहेंगे,
3: बस इंतजार करना जरूरी है क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मीठा होता है। और इसके साथ ही साथ एक बात ये है कि आज जो हम लोग बातें करने वाले हैं ना, उसमें जो बातें हैं वो बिल्कुल रिमझिम की तरह बरसती हुई एकदम शांत कर देने वाली बातें हैं। जैसे कि हम आज बात करेंगे बुजुर्गों के अकेलेपन के बारे में।
3: अकेलापन जो है ना, ये एक ऐसी अवस्था है जो बहुत परेशान कर देती है, पर जो घर वाले हैं उनकी थोड़ी जिम्मेदारी है कि उनके जीवन में सुकून के पल आए, तो उनसे मिलजोल करना बहुत जरूरी है, उन्हें अपने साथ शामिल करना बहुत जरूरी है। तो बुजुर्गों का अकेलापन ये एक विषय है। साथ ही जैसे मैंने बच्चों का जिक्र किया, तो बातें हल्की फुल्की, तो इसमें छोटे बच्चों की शरारतें, तो छोटे बच्चे जो इतने शरारती होते हैं, तो बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इस विषय पर कमेंट्स लिखे भी है, पर उन्होंने आमतौर पर बच्चे शरारती होते हैं इस बारे में लिखा है। पर आपके घर में भी अगर शरारती बच्चे हैं तो उन्होंने क्या शरारती की है? कभी कभी ऐसा था ना राजुल जी कि उन्होंने किसी कुर्सी में है ना अपना सिर फंसा लिया है,
1: हाँ,
3: या फिर उन्होंने जो सीढ़ी के बगल में जो ग्रिल लगी होती है उसमें अपना पैर फंसा लिया है, या फिर बहुत सारी कोल्ड क्रीम है वो सर में लगा ली है, लिपस्टिक मम्मी
1: एक, के। एक संदेश मैंने ऐसा पढ़ा था कि उसने खूब सारी कोल्ड क्रीम पोत ली थी।
3: तो ऐसी शरारतें होती है, कभी कभी हम परेशान भी हो जाते हैं।
1: अरे कुछ बच्चे तो वो जो रसोई के बर्तनों से खेलते हैं,
3: हाँ,
1: और उसके बाद पता चला कि बर्तन तो आप ढूंढ रहे हैं, उस समय चिमटा ढूंढ रहे हैं या कुछ ढूंढ रहे हैं, और वो पता चला खिलौने की बास्केट में पड़ा हुआ है।
3: और कभी कभी बच्चे ऐसी शरारतें करते हैं जो हमें तकलीफ में ले जाते हैं, जैसे कि पैसा निगल लिया है,
1: हाँ,
3: सिक्का निगल लेते हैं। तो इस तरह की शरारतें आपके घर में क्या हुई है वो हमें लिखकर भेजिए। साथ ही उद्यमी महिला के बारे में हम जानकारी देते हैं हर मंगलवार को, तो आज हमने चुना है अदिति गुप्ता को। और साथ ही मुहावरों की दुनिया, इसमें पानी पानी होना,
1: ऊपर से पानी पानी हो रहा है आसमान, और हम पानी पानी होने की बात करेंगे जब स्थितियां ऐसी हो जाती हैं। और आज हम छोटे बच्चों की शरारतों के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो मतलब कई बार स्थितियां ऐसी भी हो जाती हैं कि उनकी शरारतों के सामने वो कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि हम पानी पानी हो जाते,
3: माता पिता पानी पानी हो जाते, यानी यूं कह लीजिए राजुल जी कि वो हमारी पोल खोल देते हैं,
1: पोल खोल देते हैं, सही बात है। वैसे ये सब जो बातें होती है ना, इनके बीच में अगर थोड़ा थोड़ा गीत भी चलता रहे
3: तो मजा आ जाता है,
1: मजा आ जाता है।
3: सुनते हैं गीत।
4: अरे अरे ए ए ए

हाथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, तो साथी चल। एक तो ये मौसम है।

0: के साथ साथ,
1: अरे रे रे,
0: घटा के संग संग,
1: संभालना,
0: हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी।

0: जाना है।
1: भाई सोनाली अपनी सवारी तो चल दी है और चलते चलते पहुंच गई है वहां पर जहां पर हम उद्यमी महिला के बारे में बताते हैं।
2: यानी झारखंड पहुंच गए आप।
1: हाँ।
2: तो झारखंड से है अदिति गुप्ता जो भारत की उन प्रेरणादायक महिलाओं में से एक है जिन्होंने महामारी से जुड़ी हुई झिझक और गलत धारणाओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। इन्हें मेंस्ट्रुअल पीरियड्स कहते हैं, महामारी कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं। इस बारे में लोग खुलकर नहीं बात करते,
1: टैबू है ये एक, और इस बारे में ज्यादातर लोग खामोश रहना। एक जमाना था जब नहीं बताया जाता था, कहते भी नहीं थे। उन्होंने ही महिलाओं और किशोरियों के मासिक धर्म और स्वच्छता जागरूकता पर काम किया और इसे शिक्षा और संवाद का विषय बताया। मतलब ये शर्माने की, घबराने की, मुंह छिपाने की या सबसे कोने में बैठकर की बात नहीं है, बल्कि ये अपने शरीर के प्रति जागृत रहने की, सचेत रहने की और इससे जुड़ी जितनी सतर्कताएं हैं उन्हें इस्तेमाल में लाने की चीज है, ये बताने वाली है अदिति गुप्ता। बाकी बहुत बड़ा काम है
2: और ये तो बहुत नेचुरल प्रोसेस है ना। और महिलाओं को, यानी बच्चियों को, ये हम उस बारे में डरा देते हैं या कुछ बुरा बुरा कह देते हैं, बल्कि उन्हें इस बारे में बताना चाहिए कि जब पीरियड्स आते हैं तभी कोई महिला माँ बन सकती है। तो ये प्रकृति का दिया हुआ उपहार है, बल्कि हम उसे कहते हैं अभिशाप समझ बैठते हैं कि अरे ये क्या हमारे नसीब में है, पर उसे बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे अंदाज के साथ अगर हम बच्चियों को समझाएं तो ये बहुत वरदान साबित तो हो ही चुका है, तो उसे हम बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं
1: और शरीर की एक आवश्यक क्रिया है
2: जी। तो अदिति गुप्ता का जन्म झारखंड में हुआ था, बचपन से ही उन्होंने देखा

0: कि कई लड़कियां मासिक धर्म को लेकर सही जानकारी के अभाव और सामाजिक संकोच का सामना करती है और इस विषय पर घर और समाज में खुलकर बात नहीं की जाती, जिसके कारण कई सारी लड़कियों में डर और भ्रम पैदा हो जाता था।
1: और अपने जीवन के इन्हीं अनुभवों से अदिति को ये समझ में आया कि केवल चुप रहने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि सही जानकारी से और इस बारे में बात करके, इस बारे में जानकारी पहुंचा कर ही बदलाव लाया जा सकता है। वैसे उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से डिजाइन की शिक्षा प्राप्त की।
0: लेकिन उनकी रुचि केवल करियर बनाने तक सीमित नहीं रही राजू जी, बल्कि वे समाज की वास्तविक समस्याओं को समझकर उनका समाधान खोजने में विश्वास रखती थी और इसी के मद्देनजर उन्होंने मेंस्ट्रुपीडिया नामक कॉमिक बुक की शुरुआत की।
1: अपने पति तुरहिन पाल के साथ मिलकर उन्होंने मेंस्ट्रुपीडिया की शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य था कि लड़कियों को मासिक धर्म के बारे में सरल भाषा में वैज्ञानिक और सही जानकारी मिल सके।
0: अब सरल भाषा बच्चों के लिए यानी छोटी बच्चियों के लिए कॉमिक से बढ़कर क्या
1: क्या
0: हो
1: होगी, ये बहुत अच्छी पहल है।
0: जी, तो उन्होंने कॉमिक बुक, चित्रों और आसान तरीके से समझाने वाली सामग्री का उपयोग किया ताकि किशोरियां बिना डर बिना झिझक के इस विषय को समझ सके।
1: और इनके प्रयासों से कई परिवारों और स्कूलों में इस विषय पर बातचीत को बढ़ावा मिला। अदिति ने यह संदेश दिया कि स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर जानकारी छिपाने के बजाय जागरूकता फैलानी चाहिए।
0: जी, और उनका काम केवल महिलाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने समाज को ये सोचने के लिए प्रेरित किया कि किसी भी समस्या को समझने और हल करने के लिए संवाद का होना कितना जरूरी है।
1: बिल्कुल, और अदिति गुप्ता को उनके सामाजिक कार्यों के लिए कई मंचों पर सम्मान मिला। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों में अंडर 30 की सूची में स्थान मिला और वो BBC की प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भी शामिल रही।
0: और अदिति गुप्ता का जीवन बताता है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए किसी बड़े पद की आवश्यकता नहीं होती, एक छोटी सी समस्या को गंभीरता से समझकर सही दिशा में प्रयास करके बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। और अदिति गुप्ता ने एक ऐसे विषय पर आवाज उठाई है राजुल जी, जिस पर लोग चुप रहते थे, उनकी सोच ने चुप्पी को जागरूकता में बदल दिया।
1: और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जागरूकता आई तो कम से कम बच्चियों में ये एक विश्वास आया, क्योंकि बहुत सारे घरों में अभी भी ये होता है कि इन दिनों ये छूना नहीं है या दूर रहना है, या बहुत सारे घरों में अगर बेटे भी हैं तो ये बताया जाता है कि अभी ये गंदी हो गई है
0: या चिड़िया ने छू लिया।
1: तो इस तरह की बातें सुन के बेटों के मन में पहले से बात आती है कि ये गंदी होती है, ये गंदी, मैं गंदा नहीं होता हूँ,
0: ये गंदी।
1: तो एक चीज वो जो वैषम्य पैदा होता है, वो भी एक उन्होंने दूर करने की कोशिश की है, तो ये बहुत बड़ी बात है और इस विषय पर बातचीत होने लगी है। अब देखो ना, हमारे कार्यक्रम में एक ब्रेक लेने का वक्त हो गया है,
0: तो लेते हैं ब्रेक।

0: तो सोनाली, पूरा हुआ अंतराल और हम लौट आए हैं। विषय हम लोग बहुत गंभीर था जिस पर बात कर रहे थे,
1: जी
0: मासिक धर्म की बात कर रहे थे। तो आप कुछ कह रही थी इसके बारे में।
1: जी राजुल जी, ऐसा है ना कि इसके पीछे भी जैसे पुराने जमाने में आपने जैसे कहा कि महिलाओं को दूर बिठाया जाता था या फिर घर में छूना नहीं है, तो उस जमाने में काम भी महिलाएं बहुत भारी भरकम किया करती थी। जैसे कुएं से पानी निकाल कर लाना है, फिर चक्की से आटा पीसना है, फिर खेतों में काम करना है, तो उस वक्त महिलाओं को थोड़ा आराम की जरूरत होती थी, इसलिए उस जमाने में इस तरह से उन्हें अलग बिठाया जाता था। पर अब हम हल्का फुल्का काम करने लग गए, फिर भी हम उन्हीं बातों को, उन्हीं रूढ़ी वादी बातों को लेकर चले। और तो और स्वच्छता के प्रति भी हम जागरूक नहीं है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन दिनों में नहाना नहीं है, पर कितनी गलत बात है। उस वक्त स्वच्छता का, हाइजीन का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, तो हमें रोज नहाना चाहिए। नहाना

0: चाहिए, स्वच्छता का कपड़े बदलना चाहिए और जो पैड्स वगैरह उसे भी समय समय पर बदलना
1: और अब
0: बहुत
1: तो इसके
0: जरूरी।
1: विषय में सरकार की तरफ से भी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी बहुत पहल हो रही है, मुफ्त में पैड्स
0: दिए
1: गांव में
0: जाते
1: दिए जाते हैं। और एक बात और है, ये भी कहा जाता है, जब हाँ कई बार कोसते भी देखा है, पढ़े लिखे बच्चियों को भी इस बात को कोसते हुए देखा है कि अरे ये क्या है, तो ये वो समय होता है जब कहा जाता है कि स्त्री सबसे ज्यादा उसके अंदर जो शक्ति शक्ति कहा जाता है ना, तो शक्ति उसके अंदर सबसे ज्यादा इस समय होती है। और इस बारे में कई अगर हम गौर से देखें तो बहुत सारे हमें उदाहरण और कई सारी ऐसी रीतियां भी मिल जाएंगी जो इस बात को बिल्कुल
0: प्रूव करती है,
1: प्रूव करती है, प्रमाणित करती है कि भाई ये बहुत खास समय होता है। तो इस खास समय को खास तरीके से बिताने के लिए अलग बिठाया जाता था, ना कि इसलिए क्योंकि गंदे हो जाते हैं। तो गंदगी की यहाँ पर सिर्फ तभी तक रहती है जब तक हम नहाते नहीं हैं या कुछ भी दूसरी तरह की गंदगी से अपने आप को साफ करने की कोशिश करते हैं, तब गंदगी नहीं रहती। जब हमें कहीं पर आराम करने के लिए छोड़ा जाता है या अच्छे से खाने के लिए कहा जाता है, बहुत जगह ये भी
0: उस
1: होता
0: वक्त
1: है।
0: हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए, बहुत आराम करना चाहिए। इस तरह से हम देखभाल कर सकते हैं अपने घर वाली जो घर की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उन्हें इस तरह से आराम दिया जा सकता है, ना कि उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाए और उन्हें इस तरह से व्यवहार किया जाए कि अरे दूर रहो, छुओ ना, बल्कि उन्हें बहुत आराम और बहुत प्यार से उस वक्त अगर संभाले तो ये दिन भी बहुत आसानी से निकल जाते हैं।
1: और साथ ही साथ अगर हम गीत सुनते हुए ऐसी गंभीर विषयों पर बातचीत करते हैं
0: तो कार्यक्रम में मजा आ जाएगा।

चांद कहाँ खोया है ये ढूंढने भी कुछ बच्चे बहुत जिद करते हैं। जब अमावस्या होती है या जिन रातों में चांद नहीं निकलता, तो कई बार ऐसा भी होता था कि जैसे मेरे

0: घर के पड़ोस में एक छोटा बच्चा था, तो वो ये बात कहता था कि आप तो कहते हो कि रोज चांद निकलता है, रोज सूरज और चांद तो रोज आते हैं, देखो तुम्हें भी जैसे हम लोग बच्चों को बताने के लिए कहते थे ना कि देखो भाई सूरज चांद रोज समय पे आ जाते हैं, तुम्हें
1: तुम
0: भी सब
1: समय से
0: काम।
1: जाया करो ट्यूशन
0: हाँ,
1: स्कूल।
0: तो उसने कहा कहाँ आते, देखिए चांद तो आ जाया ही नहीं है। तो भाई हमने कहा ये हाजिर जवाबी बच्चों की तो बिल्कुल पानी पानी कर देती है।
1: ये जो बच्चे होते हैं हमें बहुत बार शर्मसार कर जाते हैं। ए आज बच्चों की शरारतों के बारे में हम बातें कर रहे हैं, बातें हल्की फुल्की में। तो इसमें एक सखी ने हमारे लिखा है कि मेरे बेटे ने 4 साल का था तब एक कप में मिस्त्री लोग काम कर रहे थे, केरोसिन तेल रखा था, वहां पहुंच गया उसके पास और उसने केरोसिन तेल पी लिया पानी
0: अरे
1: समझ।
0: बाप रे।
1: फिर उसको हम लोग को अस्पताल लेकर भागना पड़ा, 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहा, फिर ठीक हो गया। यानी देखिए कितने परेशान हो जाते हैं ना माता पिता दादा दादी जब इस तरह से बच्चे ये कर देते हैं। और एक लिखते हैं कि छोटे बच्चों की शरारतें, छोटे बच्चों की शरण में हमारे जीवन में खुशियां भर देती है, उनकी शरारती जब याद आती है तो आप ही चेहरा खिल उठता है। मेरा नाती 2 साल का है, वो सारी छोटी छोटी चीजें छोटी जगह पर छिपा देता है, उसे याद भी रहता है कि कौन सी चीज उसने कहाँ रखी है। पूछो तो बताता है कि जब मैं गुस्सा करती हूँ तो मुझसे कहता है कि नानी मैं पुलिस बोल रहा हूँ, प्रिंस नाम है, और मुझे डांट लगाओगे तो आपको जेल में बंद कर दूंगा।
0: अरे
1: मैं कहती हूँ तुम नानी कहकर किसे बुलाओगे, तो कहता मैं पहले दरवाजा खोलूंगा फिर आपको नानी कहकर बुलाऊंगा फिर बंद कर दूंगा। बहुत ही लटके झटके से बोलता है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, घर भरा भरा रहता है। हमें सुन के ही इतनी हंसी आ रही है
0: हाँ, तो
1: तो
0: इनके
1: और
0: मतलब
1: जो
0: इन्हें तो डांटना भी मुश्किल हो जाता होगा। एक संदेश में बताया है कि हमारे पड़ोस में रहने वाले दंपति का बेटा अंशु भी बहुत शरारती है। अभी वो 3 वर्ष का है, उसने अभी साइकिल चलाना सीखा है और उसके दादाजी ने छोटी सी सुंदर साइकिल खरीद कर दी है। कुछ दिन पूर्व वो अपने मम्मी पापा के साथ नाना नानी के घर गया था, तो अपनी साइकिल की चाबी अपनी दादी के तकिए के नीचे छुपा कर गया था और दादी को बोल कर गया था कि दादी ध्यान रखिएगा कहीं दादाजी उसकी साइकिल लेकर ऑफिस ना चले जाए।
1: कितनी मासूमियत है कि उन्हें ऐसा लगा कि इतने लंबे चौड़े इतने ऊंचे दादाजी इतनी छोटी सी ट्राइसिकल कैसे
0: हाँ, और
1: चलाएंगे।
0: कितना ये भाव भी होता है ना बच्चों में कि ये मेरी चीज है, ये पता नहीं अब ये ले लेंगे।
1: नहीं, और उन्हें ऐसा लगता ना कि पापा के पास में बाइक है या कार
0: हाँ
1: है या फिर मम्मी के पास तो पूरा किचन है, उनकी
0: हाँ
1: सारी चीजें मम्मी की, तो ये मेरी साइकिल है या मेरे खिलौने ये मेरे
0: बिल्कुल।
1: हैं। एक साथी ने लिखा है कि मेरा बेटा जब छोटा था तो पूरा दिन उधम मचा कर रखता था, छोटे बच्चों की शरारतें घर आंगन में हंसी खुशियां बिखेर देती है और उनकी मासूम हरकतें नटखट बातें और भोली मुस्कान सभी का मन मोह लेती है। कभी वो खिलौने बिखेर देते हैं तो कभी नई नई बातें सीख कर सबको चौंका देते हैं, उनकी शरारतों में मासूमियत छिपी होती है, इसलिए उन्हें प्यार और सही मार्गदर्शन के साथ समझना चाहिए।
0: और एक हमारे साथी ने एक बड़ी खतरनाक समस्या की तरफ इशारा किया है कि भाई आजकल तो छोटे बच्चों में भी इंटरनेट ने अपने गिरफ्त में ले लिया है और इसके चलते अपनों के आज्ञाओं का उल्लंघन सार्वजनिक रूप से ही देखा जा रहा है और उनके शैतानी भरी शरारत से ना ही उनकी आंखों पर ही चश्मे चढ़े हुए हैं और हम लोग अपने अपने आंखों पर चश्मे चढ़ाए हुए हैं। जाने कैसा ये आश्चर्य है जो उनके द्वारा किए जाने वाली शरारतें ही अब स्क्रीन पर ही देखा जा सकता है। मतलब वो वही शरारतें कर रहे हैं जो वो देख रहे हैं।
1: देख रहे हैं। वही एक साथी लिखते हैं कि बच्चों की शरारत बेहद पसंद आती है, तो कभी हंसी भी आ जाती है, तो कभी कभी नाक में दम भी हो जाता है, तो कभी माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है। हमारे घर में कई छोटे बच्चे थे, एक बार वीसीआर के अंदर उन लोगों ने न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डाल दिए,
0: ओ
1: अब वीसीआर चलना बंद हो गया। जब मैकेनिक को बुलाया तो उसने इतने सारे कागज निकाले, पूछने पर किसी ने भी नहीं बताया कि किसने काम किया था।
0: सच में ये शरारतें तो खत्म होने का मतलब
1: नाम ही नहीं लेती।
0: नाम नहीं लेती और लगता है कि चलती भी रहे, बाद में याद करके कितनी हंसी आती है।
1: हाँ
0: अच्छा, अब एक मुस्कुराहट और सज जाएगी अगर हम एक गीत सुन लें।
1: सुनते हैं गीत।
2: ओ मेरी ओ मेरी।

सोनाली, अभी एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, तो ब्रेक से लौटकर हम फिर बच्चों की शरारतों का एक और कांड पढ़ते हैं।

सोनाली, ब्रेक पूरा हुआ और हम लौट आए हैं ब्रेक के बाद. कार्यक्रम है सखी सहेली. और एक साथी ने लिखा है कि बचपन में मैंने भी एक शरारत की थी. 1960 के आसपास हमारे घर बिजली का कनेक्शन आया था और उन दिनों कुतूहल वश वायर से जुड़े होल्डर में लैंप लगाकर वायर को सीधा प्लग में डालकर स्विच ऑन करके जो स्पार्क हुआ उससे मेरी उंगली को झटका लगा. पर चीखने के बाद मेरे बड़े भैया ने स्विच ऑफ कर मुझे छुड़ा तो लिया, लेकिन उंगली पर स्पार्क के निशान के साथ काली पड़ गई थी उंगली, और ऊपर से डांट के साथ मार भी पड़ी थी. वो भी झटका अलग से लगा था. साथ ही एक साथी ने लिखा है कि खुद को ट्रंक के अंदर वुलन कपड़े

0: ट्रंक होता है उसको हाँ। सारे कपड़े निकाले और खुद को ट्रंक के अंदर बंद कर
1: ये दिया। बहुत खतरनाक शरारत होती है जो बच्चे करते हैं, क्योंकि कई बार इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, चोट भी बहुत गहरी लग सकती है। एक बड़ी मासूम सी शरारत हमारे एक और साथी ने साझा की है कि सर्दियों के दिन में हमारे घर में परिवार और बच्चे आए थे, वो देख रही थी कि सभी बॉडी लोशन और क्रीम का प्रयोग अपने शरीर पे करते हैं। उसने अपने टेडी बियर को पूरा कोल्ड क्रीम निकाल कर टेडी लगा दिया और बहुत बहुत ज्यादा लगा देने पर उसे संभाला नहीं तो उसने उसे बेड के नीचे छुपा दिया। घर में महक आ रही थी और जहां फर्श पर भी गिरा तो पैर में चिपक रहा था। तो बच्ची की बड़ी बहन ने बताया कि इसने कुछ किया है, तो पूरे बेड पर उसने फैला दिया था। जब उसकी माँ ने डांटा तो बोली कि टेडी को ठंड लग रही थी तो इसलिए उसे मालिश कर रही थी, जैसे नानी मुझे करती है तो मैं टेडी को कर रही थी। तो फिर उसे समझाया गया कि भाई तुम टैडी को मत करो, तुम बच्ची हो, तुम्हारी मालिश होगी, तुम नाना नानी की कर दिया।
0: कितना कितना मासूमियत भरा सवाल था और जवाब भी बड़ा ही मासूमियत भरा था। एक ने लिखा है कि एक बच्चा बहुत देर से एक घर की बेल बजाने की कोशिश कर रहा था लेकिन पहुंच नहीं पा रहा था, तो हमने सोचा कि उसकी मदद कर दे, हमने बेल बजा दिया। फिर बच्चों को वॉशरूम जाना था तो बोला अंकल अब भागो, वो घर का मालिक आ जाएगा तो हमें बहुत डांट देगा। यानी उन्हें ऐसा लगा कि किसी उसे जाना है अंदर, तो बच्चा तो शरारत कर रहा था। उसके बाद में एक ने लिखा है कि मेरे बहन के छोटे बेटे ने उनके घर के बोरिंग यानी बोरवेल में पाना पंचेश और ना जाने सारे औजार उसमें डाल दिए थे और सारे नए खरीदने पड़े।
1: क्या क्या तो गजब गजब शरारते हैं। और बच्चों की ये जो मासूम शरारते होती हैं इन पर बिगड़ते भी हैं हम कई बार, लेकिन अगर इन्हें अगर इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो उन्हें ये शरारत करने देनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं शरारतों से उनके दिमाग का भी विकास होता है, उनके व्यक्तित्व का भी विकास होता है और वो मिलजुल कर या किसी कठिन समय में अपने आप को कैसे निकालना है ये भी सीखते हैं। तो बस नजर रखनी पड़ती है बच्चों पे कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि एक बच्चा था, नया खिलौना जैसे ही उसको मिला तो वो तुरंत उसका सब उल्टा बराबर कर देता था। उसको बहुत शौक था मोटर कार का, हेलीकॉप्टर का, तो बस वो देखते ही तुरंत उसको चाहिए पेचकस, पेचकस से उसने तुरंत खोला वोला और सब अलग। तो भाई लोग कहते थे कि क्या करना है तुम्हें, तो कहता था मैं कोशिश कर रहा हूँ मैकेनिक बनने की, और बाद में आगे चल के वो वास्तव में
0: बहुत बड़ा इंजीनियर
1: बना
0: जी।
1: तो भाई ये कुछ
0: यानी उन्हें रोकी टोकी मत कि आपको लगता है कि भाई इतना महंगा खिलौना खरीदा और इसने तो दूसरे दिन तोड़ दिया, पर क्या पता उसकी जो क्रिएटिविटी है उससे वो उसे एक दिन बहुत बड़ा इंसान बना दे। साथ ही जो बच्चे ना क्रेयॉन होते ना उससे दीवारें गंदी करते हैं, तो बहुत सारे लोग डांटते हैं पर उन्हें डांटे ना एक छोटा सा कोना उन्हें दे दे, क्योंकि क्या होता है ना जो क्रेयॉन उंगलियों में पकड़ते तो उनकी उंगलियों के मसल मजबूत होते हैं, तो उन्हें गोदने दीजिए। ऐसा नहीं है कि पूरा ही घर गंदा मत करने दीजिए, पर उन्हें कह दीजिए कि ये जो है ना ये कोना तुम्हारा है, जहाँ जो या फिर व्हाइट बोर्ड आते हैं, ब्लैक बोर्ड आते हैं
1: वो लगा सकते हैं,
0: वो लगा सकते हैं, या फिर ऐसे
1: कागज लगा दे, एक जो बड़े बड़े चार्ट पेपर्स आते हैं वो लगा दे और कहें कभी कभी कोई कोई आए तो दिखाए भी कि देखिए भाई ये इसने बनाया है, देखिए कितना सुंदर बनाया है। बच्चों की अगर इस तरह से तारीफ भी करते रहे कि गोदने वाले बच्चे, ये गोदने वाली शरारतें बहुत होती हैं,
0: बहुत होती,
1: तो बस ये कह दिया जाए कि भाई देखो तो कितने सुंदर सुंदर इसने कलर्स देखा आपने कैसा इस्तेमाल किया, तो बच्चे को लगता है कि हाँ कुछ बड़ा काम किया और अगली बार जब वो गोदना शुरू करता है तो उसका ध्यान उन रंगों पर भी जाता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर की वो रचनात्मकता विकसित हो रही है।
0: पर एक बात और है कि अगर उसने कुछ गलत शरारत की है, जैसे कि कैंची से काट दिया है, खुद के बाल ही काट देते हैं, कभी कभी कभी तो पलकों के बाल भी काटने से नहीं चुभते हैं बच्चे,
1: या छोटे भाई बहनों के काट देते हैं,
0: तो उसकी ना बहुत बार बार लोगों को बता बता के तारीफ ना करे, तो उन्हें लगता है मैंने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया। तब उन्हें समझाए कि भाई अगर ये आंख में लग जाती तो आंख हमेशा के लिए चली जाती। तो ये इन बातों का हमें बस ध्यान रखना
1: है, मतलब ऐसे चुभने वाली चीजें बच्चों की पहुंच से दूर ही रहे तो अच्छा है, नरम नरम से खेल, अच्छे अच्छे खिलौने, ये सब देकर बच्चों का बचपन ऐसा ही बना रहे जैसे कि
0: गाने में है।

0: सोनाली देखिए, शरारतों की बात चल रही है तो कैसे कैसे कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं। हमारी एक सखी बता रही है कि मेरा बेटा जब 6 साल का था तो एक दिन अकेले खेलते हुए किचन के स्लैब के नीचे छुप गया और सो गया। कुछ देर बाद जब उसके दादा दादी उसको ढूंढने लगे तो वो सोने के कारण रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। वो घबरा गए। मैं दूसरे शहर में थी, मुझे पता चला तो मैंने सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग में चेक किया तो पता लगा जनाब कहाँ छुपे थे। मैंने तुरंत उसके दादाजी को कॉल किया, जब वो वहां गए तो पता चला कि सो रहा है आराम से। खैर, जान में जान आई।
1: यानी दादाजी नाना जी रहे ना, तो उसका भी कितना फायदा है ना।
0: बिल्कुल, मतलब बच्चों की शरारतों के बीच में एक अंकुश भी रहता है, वैसे दादा दादी को भी अच्छा लगता है, अकेलापन नहीं लगता।
1: यानी परिवार में पुल का काम करते हैं ना, ब्रिज का काम करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो दादा दादी ब्रिज का काम करते हैं कि उनकी बदौलत पूरा परिवार जुड़ा रहता है।
0: मूल से सूद ज्यादा प्यारा होता है कहा भी जाता है, तो भाई वो बच्चों को प्यार भी देते हैं, भरपूर प्यार भी देते हैं, और जो अनुभव होता है ना उनका अपने बच्चों को पालकर, वो भी काम आता है,
1: बहुत काम आता है। पर अभी परिस्थितियां थोड़ी बिकट होने लगती है। एक साथी लिखते हैं कि बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी के साथ हम बहुत समय बिताते थे, अभी बच्चों में शायद वैसा समय नहीं है और न ही उतने शौक है उनसे कहानी सुनने के, किस्से सुनने के। सब कुछ तो उनको फोन में और टीवी में मिल जाता है, दादा दादी के साथ समय बिताना पसंद भी नहीं आता उन्हें। इसका नतीजा ये होता है कि अधिकतर बुजुर्ग अकेलेपन में ही समय बिताते हैं, जबकि बुजुर्ग के पास तो सजीव अनुभव और ज्ञान होता है, संस्कार देने की काबिलियत होती है और सोशल

0: मीडिया अब टीवी से जुड़ गए हैं, उस जमाने में कहाँ था सोशल मीडिया और टीवी।
1: बिल्कुल,
0: तो ये एक थोड़ी सी समस्या है, परेशानी है, ये
1: परेशानी है। और इस बारे में हमारी एक सखी लिख रही है कि आजकल के समय में ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि परिवार बहुत छोटे हो गए हैं। हमारे घर में ये समस्या नहीं है, हमारा संयुक्त परिवार है, 13-14 लोग अभी साथ में हैं, तो बड़े बुजुर्गों को अकेलेपन की भावना नहीं आती है, चहल पहल हमेशा रहती है। मुझे लगता है कि एकल परिवार भी एक कारण है अकेलेपन का।
0: बहुत ही बड़ा कारण है अकेलेपन का, एकल परिवार। और सचमुच है ना, पुराने जमाने की बात की जाए ना राजुल जी, तो उस वक्त प्राइवेसी नाम की ऐसी चीज ही नहीं हुआ करती थी जो आजकल लोगों को चाहिए। लोगों को बस लगता है कि हमें बस हमारा स्पेशल यानी बेडरूम, उसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम उनका हो, उसमें किसी को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, बच्चों को भी सब प्राइवेसी की जरूरत है। पर पुराने जमाने में सब एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल करते थे, एक घर में रहते थे, लड़ते झगड़ते भी थे पर फिर एक हो जाते थे, तो एक बहुत सुंदर दिखता था ऐसा घर। पर अभी ये थोड़ा सा इसकी कमी नजर आ रही है। एक साथ लिखते हैं कि बुजुर्ग अगर घर में है तो ये बात का सबसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास थोड़ी थोड़ी देर जाकर समय देना चाहिए, बैठना चाहिए, उनकी जरूरत का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ हमारी सेवा और समय ही नहीं, उन्हें हमारा थोड़ा सा प्यार भी दे देना चाहिए तो वे बड़े खुश हो जाते हैं।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जब रेडियो पर आपके कार्यक्रम सुनते हैं तो अकेलापन नहीं लगता। हार्ड कॉपी में किताब पढ़ते हैं जिससे मन के तूफान शांत होते हैं। सोशल मीडिया कम वापरता हूँ, कसरत करके तंदुरुस्त जीवन जीने का प्रयास है। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखकर कहा खाओ पियो और मौज करो, सादा जीवन, किसी को मदद करने से भी अकेलापन महसूस नहीं होता।
0: क्या बात है। एक साथी लिखते हैं एकल परिवारों में बुजुर्गों का अकेलेपन की समस्या बहुत ज्यादा है। बुजुर्गों का अकेलापन केवल एक भावनात्मक समस्या नहीं है बल्कि उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसके कारण उनमें डिप्रेशन और याददाश्त कमजोर होने की जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। इसके उनके इस खालीपन को दूर करने के लिए बातचीत, जुड़ाव और नियमित दिनचर्या बहुत जरूरी है। दो प्यार के बोल, सुविधापूर्ण उनकी दिनचर्या, इस उम्र में उनके अकेलापन दूर करने के लिए मेल मिलाप बहुत जरूरी है जो आजकल बेहद कम हो गया है।
1: और ये एक हमारे श्रोता ने अंग्रेजी में संदेश भेजा है। आई एम अ सीनियर सिटीजन रिटायर्ड फ्रॉम बैंक एंड स्टार्टेड अ न्यू जर्नी इन रेडियो एज आरजे ऑन कम्युनिटी रेडियो, इंजॉइंग अ लॉट। आई लव रेडियो सिंस माई चाइल्ड हुड। विविध भारती साथ हो तो बोर होने का सवाल ही नहीं है।
0: क्या बात है
1: भाई, इस तारीफ के लिए शुक्रिया, विविध भारती के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। और एक बात और इनके संदेश से पता लगती है कि अगर बुजुर्ग कोई अपना शौक डेवलप कर लेते हैं, हाँ डेवलप कर लेते हैं उस समय भी, ये सोचकर नहीं कि ये जिंदगी का अवसान है बल्कि ये एक नया पड़ाव है, एक नई यात्रा है। और अगर वो एक कोई शौक अपना शुरू कर लेते हैं तो उससे निश्चित रूप से उन्हें अकेलापन कम महसूस होगा। ये तो सही बात है। एक हमारे पढ़ रही थी तो भी एक संदेश में शायद ये भी कहा गया है कि आजकल बच्चों के पास समय नहीं होता। सही बात है, समय नहीं होता, बड़े जब होने लगते हैं तो कम समय रहता
0: है। पर अगर ऐसा है ना कि बच्चे नहीं बात कर रहे हैं तो बुजुर्ग खुद भी जाके बोल सकते हैं कि कैसे हो बेटा, क्या हालचाल है, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। नहीं तो ऐसा लगता ना कि अरे वो बात नहीं कर रहे, वो नहीं जा रहे, तो पहल दोनों तरफ से होनी
1: दोनों
0: चाहिए,
1: दोनों तरफ से होनी चाहिए। हाँ। और अगर मान लीजिए कि बच्चे बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, तो अगर बच्चे को उस समय उसको जो चाहिए, मान लीजिए कि बहुत व्यस्त है, पढ़ाई कर रहा है या किसी प्रोजेक्ट में अपने बिजी है, और आप सिर्फ इतनी ही सहायता कर रहे हैं कि मान लीजिए प्रोजेक्ट बनाने में उसको कुछ काटने की जरूरत है, आप काट कर उसे वो पकड़ा देते हैं, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है।
0: उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगता है।
1: और हमें गीत सुनना भी बहुत अच्छा लगता है।
0: सुनते हैं गीत।

0: भाई देखो, हमारे एक श्रोता ने अपनी दिनचर्या साझा करके बताया है कि सुबह पूजा पाठ, फिर शिवालय, फिर भोजन, फिर 1 बजे सुरीला सफर सफर, फिर सखी सहेली, फिर 5 बजे फिर आराम, और फिर 5 बजे 5 किलोमीटर वॉकिंग, फिर भोजन, फिर टीवी प्रोग्राम, फिर 5 या 6 घंटे नींद। यही है 70 साल के बुजुर्ग की दिनचर्या।
1: क्या बात है, ये तो किसी 17 साल के जो है ना युवा को भी शर्म आएगी, इतनी परफेक्ट दिनचर्या है आपकी।
0: हाँ, सही बात है।
1: वैसे पानी पानी मुहावरे का मतलब है शर्म से पानी पानी होना। तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि पानी पानी होना, इस मुहावरे से एक बात याद आ गई। तब मेरा बेटा बहुत छोटा था और उसे लेकर मैं एक परिचित के घर गई। बातचीत के बाद मेरी परिचित चाय बनाने के लिए उठी तो मैंने बोल दिया मैं चाय नहीं पीती, और मेरे बेटे से पूछा दूध पियोगे, तब भी मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरा बेटा भी दूध नहीं पीता था। लेकिन जैसे ही मैंने मना किया, मेरा बेटा तुरंत बोल पड़ा कि मुझे खूब गर्म दूध दीजिएगा। और आंटी सुनिए ना, मेरी मम्मा चाय नहीं कॉफी पीती है। इसलिए मम्मा के लिए कॉफी बना दीजिए। मुझे उस समय बहुत शर्म आई और शर्म से पानी पानी हो गई।
0: ये सही बात है, बच्चे पोल खोल देते हैं। एक बच्चे ने कहा कि जब उसके पिताजी ने कहा कि भाई हम घर पर नहीं है, जाओ क्या दो अंकल आए, क्या दो घर पे नहीं है, तो उसने जाके कहा, पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। अब मतलब पिताजी बिल्कुल पानी पानी, वो झक मार के फिर बाहर निकले और मिले अपने मित्र से, क्योंकि बच्चे ने बता दिया था कि पिताजी ने कहा है कि हम घर पे नहीं है।
1: एक बार एक व्यक्ति थे, उनके मित्र आए थे, तो उन्हें अंदर से आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, उनकी छोटी सी बेटी थी। तो अब क्या बात करें बच्चे से, तो उन्हें पूछा कि बेटा तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं, पहले नाम पूछा क्या नाम है आपका, फिर आपके पापा क्या काम करते हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरे पापा तो घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, कपड़े धोते हैं।
0: सब पोल खोल दी।
1: अंदर से पापा ने सुना, अरे ये मैं तो वो पानी पानी हो गए।
0: अच्छा वो बच्चा भी बेचारा क्या करे, उसने काम का मतलब ये समझा कि हम, माँ कहती होगी कि हम काम कर रहे हैं, तो काम का मतलब झाड़ू लगाना। तो कभी कभी अगर पिताजी ने झाड़ू लगा भी दी तो उसने कह दिया कि वो ये भी काम करते हैं, ये भी काम करते हैं, मतलब वो तो बड़ा ही कर रहा था।
1: और एक बार ऐसे हुआ कि बैठे हुए थे लोग, तो छोटी बच्ची भी थी साथ में, तो उसकी मम्मी बोले कि चलो टाइम हो रहा है हम घर जा रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं मम्मी रुको रुको, अंदर से कप प्लेट की आवाजें आ रही है, शायद चाय बनने वाली।
0: सच में ये स्थिति जो है बड़ी खतरनाक होती है, उस समय माँ बाप को समझ में नहीं आता।

0: कि देखें रुकें क्या करें। और कभी कभी ये भी कहना पड़ता है भाई बड़ा शरारती है, जैसे कह दे कि कई बार ऐसा होता है कि माएं कहती हैं बच्चा खाता ही नहीं, कुछ नहीं खाता, और इधर बच्चे ने जैसे ही नाश्ते की प्लेट आई और उसने खाना शुरू किया,
1: सब खा लिया,
0: सब खा लिया। तो ऐसे में एक बात बस यही कहेंगे कि अगर बच्चे हैं तो बच्चे हैं, और हो सकता है कि सामने प्लेट में जो हो वो उन्हें पसंद आ रहा हो इसलिए वो खा रहे हो, तो घर में ऐसा रूल बनाए ना कि बहुत सी बार ऐसा होता ना कि बच्चे हम बाहर जाके नहीं खाने देते बच्चों को, तो ऐसा रूल अगर आपने बनाया है कि बाहर जाके किसी के यहाँ खाना मत, तो बच्चे का मन फिर मचलेगा,
1: जिसके लिए हम खूब मना करते हैं।
0: हाँ, खूब मना करते हैं, बल्कि इसके बजाय ये कर दें कि भाई अगर बच्चे को कोई चीज पसंद आ रही है, जैसे अगर बच्चे ने, छोटे बच्चे ने, मान लीजिए एक मैंने देखा था कि एक बच्चे घर गया, बच्चे छोटी बच्ची थी उनके साथ, और उन्होंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लाकर उसमें रखे और उन्होंने कहा कि खाओ। अब जगह ऐसी थी कि जो माँ गई थी तो उसको लगा कि नहीं खाना चाहिए, तो वो उसने एक ले लिया और कुतरना शुरू कर दिया। बच्ची ने एक किशमिश उठाई, माँ ने देखा, फिर दूसरी किशमिश उठाई, माँ ने देखा, फिर तीसरी किशमिश उठाने वाली थी तो उसे लगा कि टोकना चाहिए, फिर उसे लगा कि अगर हम टोकेंगे तो बच्ची को गलत मैसेज जाएगा, तो उसने क्या किया कि कहा कि अच्छा तुम्हें किशमिश अच्छी लग रही है, और दो चार किशमिश बीन कर उसको अलग से दे दी, बच्ची अपना वो खाती रही, और इस तरह से उसको भी पानी पानी नहीं होना पड़ा और बच्ची की भी शरारत या जो बाल स्वभाव है वो पूरा हो गया।
1: और जैसे पानी पानी होने की बात है, इसके तो कई उदाहरण हैं कि कई बार ऐसा होता है ना कि किसी को कुछ चीज खाने की मनाही होती है और भाई इच्छा तो होती है, अब मिठाई खाने की मनाही है, घर वाले कहने की भाई डायबिटीज है खाओ मत मीठा का, अब बहुत ललचाया हलवाई के यहाँ जाके खा लिया, घर वालों ने किसी ने देख लिया
0: तो पानी पानी हो गए।
1: वैसे लज्जित होना स्वाभाविक सी बात है, पर लज्जित हो गए है ना तो उसके बाद में अपराध बोध से ग्रसित नहीं होना है, उसे वही छोड़ देना है कि ठीक है ना, गलती हो जाती है, बड़े हैं, बूढ़े हैं, कोई भी उम्र के लोग हैं, अगर गलती हो गई है तो उसको हंस के स्वीकार कर ले, उसका दिल पर बोझ ना रखे, उन्हें जिंदगी को हल्के में लेना चाहिए।
0: और देखो हमारे एक श्रोता ने बड़ा प्यारा सा संदेश हमारे साथ साझा किया है कि वो जो विविध भारती के कार्यक्रम होते हैं जिनमें वो अपने संदेश साझा करते हैं, जैसे सखी सहेली या सुरीला सफर, तो उसमें वो अपनी और अपनी धर्मपत्नी के प्रेम के बारे में अगर कभी कुछ संदेश देते हैं तो वो पढ़कर पत्नी पानी पानी हो जाती है शर्म से, तो ऑफिस में देते हैं, पत्नी वहां घर में पानी पानी हो जाती है। तो भाई लेकिन ये कितनी सुंदर यादें स्मृतियां आप लोग साथ साथ सजो रहे हैं
1: सचमुच, और ये यादें हैं ना, ये बहुत सुंदर यादों को हमें संजो कर भी रखना चाहिए कि ये पल, ये क्षण जो है फिर से नहीं आएंगे,
0: फिर से नहीं आएंगे, जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन हम ये समय नहीं बीतने देंगे, हम गाना सुनेंगे,
1: बिल्कुल सुनते हैं गीत।

के होलारे में मेले में अकेले तेरी बाजार सारे में कौन सा बनाया ना बहाना बहाना बहाना नजत यमला पगला दीवाना हो रबा इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है साडे उत्ते

0: तो भाई बड़ी रोचक रोचक बातें हो गई। हम लोगों ने काफी किस्से सुन लिए और उन पानी पानी होने वाली स्थितियों के बारे में भी जान लिया, जो कई बार एकदम ऐसा कर देती हैं कि समझ में नहीं आता इधर जाएं कि उधर जाएं, क्या करें कैसे करें।
1: तो बहुत मजा आया, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखकर भेजे। तो विविध भारती से जुड़े रहिए और हमें दीजिए इजाजत। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और राजुल का नमस्कार।
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: एक जानी मानी शायर, एक जानी मानी गीतकार। वो कहते हैं, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर। शकील आजमी जो कहते हैं, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल
1: 15 इंतजारी है तेरी।
0: फिल्म मुल्क,
2: सब सखियों का पिया प्यारा, सब में है और सब सुनारा।
0: और फिल्म थप्पड़,
1: एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर हम सा।
0: जाने माने शायर शक...

0: वकील आजमी से बातें की हैं ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का दूसरा भाग।
1: बेखबर दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है। उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था,

0: आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी ज़बां देखता है। शकील आज़मी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी, और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
0: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो अनुभव सिन्हा जी देर से मिले, लेकिन मिले तो दुरुस्त मिले।
1: हाँ,
0: बहुत सारी फिल्मों की आमद हुई आपकी फिल्मी दुनिया में, आर्टिकल 15, भीड़, और इन सब में गाने लिखे, थप्पड़ के सारे गाने आपने लिखे।
1: हाँ, मुल्क के सारे गाने।
0: तो मुल्क के, तो मैं चाहती हूँ कि मुल्क फिल्म का गाना, फिर आर्टिकल 15 का, क्रमवार आप बताएं और रचना प्रक्रिया बताएं।
1: मुल्क का गाना आप वो सुनाएं, पिया समाए।
0: जी,
1: बहुत अच्छा गाना है,
0: बहुत पसंदीदा कव्वाली।
1: हाँ,
0: कव्वाली है।
1: यस यस,
0: कव्वाली की शक्ल में है ये गाना। और हम आपको बताएं कि विविध भारती
1: उसमें हमारा पूरा हिंदुस्तान है उस गाने।
0: जी बिल्कुल। हाँ, पूरी फिल्म बड़ी बेहतरीन है। हाँ, इसमें अनुभव सिन्हा जी को बधाई जाती है सबकी ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से।
1: मैं समझता हूँ कि जो मुल्क फिल्म है
0: जी,
1: या आर्टिकल 15 है, ये ऐसी फिल्म है जो हमारे हिंदी सिनेमा में जो ऐसी फिल्में बनी हैं जो याद की जाएंगी,
0: बिल्कुल, जिनका जिक्र किया जाए,
1: जिक्र
0: ये
1: किया
0: दर्ज
1: जाए
0: होती है आज के समय।
1: हाँ, वो ऐसी फिल्मों में ये फिल्में हमेशा जिंदा रहेंगी, जैसे थप्पड़ है, मुल्क है, आर्टिकल 15 है। और मेरी खुशनसीबी है कि मैं इन फिल्मों का हिस्सा हूँ।
0: शकील साहब, ये मुल्क फिल्म की बेहद मकबूल कव्वाली, और विविध भारती से एक प्रोग्राम होता है सुबह चित्रलोक, पहले ये भारत की गूंज के नाम से प्रसारित होता था, इसमें अक्सर हम विविध भारती से प्रसारित किया करते थे, और उसमें आपका नाम लेते हुए बड़ा फक्र महसूस होता था कि शकील आज़मी ऐसे शायर गीतकार हैं जिन्हें हम निजी तौर पर भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि बात अनुभव सिन्हा जी की चली है, तो आर्टिकल 15, भीड़, कई फिल्में हैं आपके खाते में, तो क्रमवार इनका जिक्र करें, रचना प्रक्रिया बताएं इन गानों का। आर्टिकल 15, इंतजारी, जिसे आयुष्मान खुराना ने गाया भी है।
1: जी हाँ, जी हाँ, इंतजारी सुनवा सकते हैं आप
0: जी,
1: बिल्कुल।
0: तो
1: आर्टिकल 15 से,
0: तो कैसे वो गाना बना, वो बनने की क्या कहानी?
1: उस गाने की कहानी ये है के
0: कोई दिलचस्प बात हो तो
1: हाँ, दिलचस्प बात है। अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे ये कहा, कहने लगे यार सिचुएशन मैं नहीं बता रहा हूँ।
0: हाँ,
1: आप यूं समझ लीजिए कि वो गुलजार साहब का वो एक गीत था, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास
0: पड़ा है,
1: पड़ा है,
0: इजाजत फिल्म
1: लौटा दो। हाँ, तो इसका उल्टा गाना चाहिए मुझे।
0: अरे क्या बात है।
1: हाँ, उल्टा मतलब के
0: तो, सामान देना है।
1: हाँ, वो कह रहे कि वो कह रहे लौटा दो।
0: हाँ,
1: और मुझे ऐसा चाहिए कि ले जाओ।
0: हाँ,
1: ठीक है,
0: संचय करना। हाँ, है यहाँ पर।
1: हाँ, तो उसमें जो गाना है। हाँ, वो मैंने लिखा है कि मोहब्बत में जो दो लोगों के आपसी जो मोमेंट्स होते हैं, है ना, हंसी है, गम है, रोना है, मुस्कुराना है, है ना, साथ में कुछ कहीं खा रहे हैं, कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं आइसक्रीम खा रहे हैं, और कहीं किचन में थोड़ा झगड़ लिए हैं, तो ये सारे जितने भी मोमेंट्स हो सकते हैं, तो अब हम बिछड़ गए हैं और मैं इसको अकेला जी रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या बात है, ये सारा कुछ एक गाने में आना।
1: हाँ, तुम तो बिछड़ गए हो और खुश हो। हाँ, लेकिन मैं वहां से निकल नहीं पा रहा हूँ। वो साझा जो चीजें हमारी, मैं उसको अकेला जी रहा हूँ और मैं दुखी हो रहा हूँ, तो तुम एक काम करो, ये आओ और इसको ले जाओ। तो ये मैंने एक मतलब स्टोरी बोर्ड बनाया और इसको मैंने शायरी में लिखा और वो इस तरह से गाना बना, इंतजारी
0: जी।
1: हाँ,
0: तो वो शायरी कैसे बनी वो बताइए, मतलब वो शेर अगर याद है तो।
1: हाँ, इसी तरह से बनी वो कि आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी।
0: क्या बात है, वाह।
1: ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी।
0: वाह वाह, बहुत सुंदर
1: है ना।
0: तो
1: अच्छा, पहले इसमें ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी। हाँ, ये लाइन पहले नहीं थी। हाँ, उसमें कुछ खुमारी। हाँ, राइमिंग की लाइन थी।
0: हाँ,
1: तो अनुभव सिन्हा साहब ने कहा कि शकील भाई ये इंतजारी लफ्ज बड़ा यूनिक है, इंतजार होता है, इंतजारी लोग नहीं लिखते हैं। तो हमारे बचपन में हम गांव में सुनते थे, अरे हम तुम्हारी इंतजारी देखत रहे हैं, है ना, इंतजारी कर नहीं रहे थे, इंतजारी देखत रहे हैं, पुराने लोग बोलते थे। तो अब हमारा जो

0: ना, वो बहुत विशाल बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत मतलब भाषाएं बहुत हैं, तो कोई भी शब्द कुछ अलग से आता है तो वो कानों को भला लगता है,
1: बिल्कुल
0: है ना, कुछ नया लगता है। तो मैंने इंतजारी जानबूझ के, और बोले ये इंतजारी और रेजगारी बड़े कमाल, अरे इंतजारी बड़ा कमाल लग रहा है, ये खुमारी जो है इसको चेंज करो यार, कुछ नया लफ्ज ले आओ। तब उसकी जगह पे ये आया, आना आ भी जाना, ये ट्यून पे लिखा हुआ गाना
1: जी।
0: और अनुराग साइकिया ने म्यूजिक किया है इसका। आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी, ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, वो जो हम रोए साथ थे वो सब आके लेके जा। तो वो उसका उल्टा गाना था जो गुलजार साहब का था, ये उसके बरक्स था। तो ये सारा मैंने एक स्टोरी बोर्ड बना लिया कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और फिर मैंने इसको लिखा और गाना इस तरह से बना।

जो गाना हम सुनते हैं बहुत एंजॉय करते हैं हम स्टूडियो में बैठकर और हमारे श्रोता स्टूडियो के बाहर, लेकिन उस गाने के बनने के पीछे कहानियां होती हैं और कई बार मुश्किलात भी होती हैं कि आप जैसे बता रहे हैं कि अनुभव सिन्हा जी आपको दृश्य बता रहे हैं और आप लिख रहे हैं फिर चेंजेस, तो एक कितना आसान नहीं होता है सफर।

0: तो फिल्म मुल्क में जो कव्वाली है बड़ी हिट पिया समय है, हम सबका पसंदीदा कव्वाली हम सबकी, इस गाने की बनने की क्या कहानी थी?
1: ये तो बहुत ही मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने, और वो तो चले गए शूटिंग करने। मेरे साथ अक्सर होता है यही, उनकी फिर उनके गानों को लेके कि हाँ हाँ कर लेंगे, और ऐसा फिर वो शूटिंग पे चले जाते हैं और फिर जब जरूरत होती है तब कहते जल्दी करो गाना चाहिए। तो अब वो शूटिंग कर रहे हैं उधर लखनऊ के पास मलियाबाद वगैरह में, और
0: ये अभी गाना लिख दो जल्दी।
1: और हम जो हैं, मैं और अनुराग साइकिया ने ये इसका किया था म्यूजिक, वो और
0: थप्पड़ में भी अनुराग साइकिया का संगीत था। हाँ, आर्टिकल 15 में भी
1: थप्पड़ सोलो था
0: और मुल्क में,
1: और मुल्क में एक ही गाना था उनका ये, बाकी प्रसाद साष्ठे ने दो गाने किए थे
0: जी जी।
1: तो हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है, वो रूट पता नहीं चल रहा है कि जाना किधर है।
0: यहाँ पर अनुभव सिन्हा जी का भरोसा भी आप पर अटूट है।
1: हाँ,
0: कि वो गाना देकर चले गए हैं।
1: हाँ, अब मैं फोन कर रहा हूँ कि इसमें लिखना क्या है। अब वो क्योंकि उधर बिजी है शूटिंग में, ध्यान उधर लगा हुआ है, कह रहे मैं बताता हूँ। अब हम इंतजार कर रहे हैं, फिर उनका फोन आया, कह रहे हैं मैंने आपको एक वीडियो भेजा है वो देख लीजिए आप, सुन लीजिए। मैंने कहा सर आप बताइए ना कि उसमें क्या है और आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि साइंस ये कहती है कि जब सारे रंगों को हम मिलाते हैं तो सफेद रंग बनता है, सारे रंगों को मिलाने से सफेद रंग
0: जी,
1: बनता है
0: जी।
1: मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है सर?
0: बिल्कुल सही बात है, सफेद रंग तो अपने आप में सफेद रंग है, उसको कोई भी रंग मिलाएंगे तो वो तो दूसरा हो जाएगा।
1: तो, तो बोले नहीं ऐसे ही होता है, यही थॉट है। और ये गाना मुझे देशभक्ति इसमें होनी चाहिए और कौमी एकजहती होनी चाहिए,
0: जी जी
1: ठीक है, पूरा देश एक साथ चलना चाहिए इस गाने में। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसको लिखा। मुश्किल गाना था बहुत
0: जी।
1: मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी,
0: बेहतरीन फिल्म थी,
1: डिफिकल्ट सिचुएशन थी
0: जी।
1: तो मैंने लिखा उसमें के पिया समाए जिया में मोरे पिया समाए, ये हुक है, उससे पहले लाइन आती है सात रंग हैं सातों पिया के,
0: सात रंग हैं सातों पिया के।
1: हाँ, क्या सात रंग होते हैं
0: जी।
1: अब मुझे सफेद पर खेलना है और उसको ऐसा बनाना है उसमें पूरा देश एक साथ जुड़ना चाहिए, ठीक है, सारे समुदाय जो है वो एक साथ जुड़ने चाहिए, तो वो सारे जो है एक साथ जुड़ने चाहिए। तो अच्छा अभी इसमें जो पिया है ये वो भी पिया है जो मतलब जो जमीन पे है, है ना, और वो भी पिया है जो खुदा है, ईश्वर है, भगवान है,
0: खुदा है,
1: हाँ, और महबूब भी है हमारा, ठीक है, डबल मीनिंग है। इस तरह के बहुत सारे लागा चुनरी में दाग और फलाना, वो
0: छुपाऊं कैसे,
1: है ना, घर जाऊं, घर जाने का मतलब वो मरने के बाद की जिंदगी,
0: बिल्कुल बिल्कुल दो अर्थी।
1: हाँ, तो ये दो अर्थी ये भी मैंने इसको करके आगे बढ़ाया। सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के,
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: तो ये दूसरे वाले को वो कटाश कर रही है कि तू भी कभी लगा के देख, तुझे भी वो सब पिया के ही लगे
0: रंग दिखाई,
1: हाँ, अलग अलग मत देख, हम सब एक हैं, सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के, सातों से मिलके भई मैं उजली,
0: वाह क्या बात है,
1: सातों से मिलके
0: भाई
1: में उजली,
0: वा वा।
1: कोई हरा कोई गेरुआ बताए,
0: क्या बात,
1: पिया समाए जिया में मोरे पिया समाए। अभी देखने वालों की नजर है कि कोई मुझे हरा बता रहा है कोई गेरुआ बता रहा है, लेकिन मैं तो सातों से मिलके उजली हो गई हूँ
0: जी जी,
1: और तू भी लगा के देख कभी। तो ये बड़ा ही मतलब टेढ़ा गाना था और ऐसा वो सटीक आया है ऐसा कि एक लाइन भी चेंज नहीं हुई, बड़े खुश हुए, बोले आगे बढ़ो।
0: तो ये जो फिल्म है वो एक संदेश देती है, ये गाना भी संदेश देता है, सब एकजुटता का संदेश है, और बेहतरीन फिल्म का बेहतरीन गाना ये सुनवाते हैं हम।

0: शकील साहब, अभी आपकी जर्नी के बारे में बहुत सारी बातें करनी है। अब यहाँ हम आते हैं आपकी फिल्म धोखा में। फिल्म धोखा,
1: हाँ,
0: एम एम करीम साहब ने गाया है और कंपोज भी किया है गाना, इसके बारे में एकदम संक्षेप में बताएं, क्योंकि
1: मतलब आप भट्ट साहब के दरवाजे पर पहुंची हैं।
0: पहुंच गए, दस्तक दे रहे हैं, और महेश भट्ट साहब के साथ आपने बहुत सारा काम किया है, और आपकी फिल्मी दुनिया में उनका बहुत बड़ा योगदान, कह ले योगदान भी है, और काफी दोस्ती मित्रता है।
1: हाँ, प्यार रहा बहुत उनका भट्ट साहब का उस जमाने में। तो ये फिल्म उनकी जो बेटी पूजा भट्ट, उन्होंने डायरेक्ट की थी, और ये गाना जो है एम एम करीम साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, मेरे पसंदीदा कंपोजर हैं वो, और उनको हिंदी नहीं आती ठीक से, है ना, तो भट्ट साहब के ऑफिस में उन्होंने मुझे धुन दी, ट्यून बताई हारमोनियम प्ले करके, मैंने उसको तब वो छोटे वाले जो टेप चलते थे मैंने रिकॉर्ड किया उसमें, और वहीं बैठ के मैंने गाना लिखा वो, और गाना लिखा जब उन्होंने उसको गाना शुरू किया, कहीं कहीं अटके लेकिन फिर वो रवां हो गया, जब उनके मीटर में पूरी तरह से रवां हो गया वो गाना
0: जी।
1: तो मुस्कुराहट उनके चेहरे की बढ़ती गई,
0: क्या बात है,
1: हाँ, वो जो ट्यून में पूरी तरह से वो गाना, तो वो गाना जो है वो पूजा को भी बहुत पसंद था, बहुत खुश थी उस गाने से वो। लेकिन इससे पहले भट्ट साहब के यहाँ मेरी पहली जो फिल्म थी वो थी जहर,
0: हाँ, जिसका गाना बहुत मशहूर हुआ था, फिल्म का गाना इनकी आवाज, श्रेया घोषाल की आवाज में जो गाना था, अगर तुम मिल जाओ, बहुत बहुत मशहूर हुआ था
1: जी जी। तो ये गाना दरअसल पाकिस्तानी गाना था, ये उसको यहाँ पर अनु मलिक साहब ने रिक्रिएट किया था, रेशमा की आवाज में भी आपको मिल जाएगा वो गाना, कई लोगों ने गाया हुआ है, पुराना गाना है। और ये फिल्म मोहित सूरी की भी पहली फिल्म थी, मोहित सूरी थे इसके डायरेक्टर, वो भी मतलब उनके भट्ट साहब के भांजे होते हैं
0: जी।
1: और ये फिल्म बड़ी कामयाब रही, इसके सारे गाने सुपरहिट हुए और सारे गामा म्यूजिक कंपनी ने इसके गाने रिलीज किए थे, और हमें जो है वो पहली बार आउटस्टैंडिंग म्यूजिक सेल नाम से हमें ट्रॉफी बांटी गई, उसका एक फंक्शन हुआ, एक तकरीब हुई उसकी, और बड़े खुश थे वो लोग, क्योंकि म्यूजिक बहुत बड़ा हिट था और फिल्म भी हिट हो गई थी, सिल्वर जुबली का भी उसका ट्रॉफी मिला था हम लोगों को
0: जी।
1: तो उसमें गाना था वो के ने गाया था वो, ऐ बेखबर ऐ बेखबर
0: जी जी, हाँ,
1: तो वो भी बहुत बेहतरीन गाना था। और एक गाना वो था जाने जा
0: जी,
1: तुझसे बिछड़ के मैं जाऊं कहां, वो भी बहुत, सारे गाने ही बहुत हिट हुए थे उसके, और बड़ी कामयाब फिल्म रही वो, तो वो पहली फिल्म थी मेरी भट्ट साहब के यहाँ
0: जी। जी, तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाया श्रोताओं को,
1: आई बेखबर
0: सुनते हैं, हाँ, ये गाना।

0: रूप कुमार राठौड़ के साथ आपने और भी काम किया है, और भी गाने उन्होंने गाए हैं, वो उनके बारे में।
1: हमारी शुरुआत ही साथ में हुई थी
0: जी।
1: रूप कुमार राठौड़ साहब के बारे में मैं बताऊं, जब मैं यहाँ नया नया आया था तो जो कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर थे, बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। रूप कुमार राठौड़ साहब से मेरी मुलाकात हुई
0: जी,
1: तो वो गजल सिंगर होते थे
0: जी जी,
1: और प्लेबैक सिंगर भी होते थे
0: जी, बिल्कुल
1: है ना। फिल्मों में उन्होंने कम गाया, लेकिन एज ए गजल सिंगर उनको ज्यादा
0: नाम शोहरत
1: और इज्जत है उनकी। लेकिन कुछ गाने भी उन्होंने गाए हैं और उसमें से कई गाने बड़े हिट हैं, जैसे ऐ जाते हुए लम्हों,
0: जी जी, जी।
1: संदेशे आते हैं, या वीर जारा का गाना है, है ना। इस तरह के कई गाने हैं जो उनके बड़े हिट हैं। तो जब मैं आया तो मेरी मुलाकात हुई तो वो मेरी गजलें सुनते थे और उसमें से चूज करते थे और गजलों को कंपोज करते थे। लेकिन वो गजल का टाइम भी जा रहा था। जब मैं आया हूँ उससे पहले गजल का एक बड़ा दौर आया था, जिसमें जगजीत जी की गजलें और पंकज उदास साहब की गजलें, हरिहरन साहब, रूप कुमार राठौड़ साहब, मतलब नए गजल सिंगर भी आते थे, उनके एल्बम भी खूब चल रहे थे
0: जी जी।
1: लेकिन जब मैं

0: मैं हूं तो ये दौर खत्म हो रहा था
1: जी जी,
0: गजल का मार्केट डाउन हो रहा था जब मैं आया था, तो मेरे सामने ही वो रूप भाई ने कैफी आजमी साहब का एल्बम किया मेरे सामने, मीर तकी मीर का एल्बम किया मेरे सामने, तो मेरी वो गजलें कंपोज करते थे। अच्छा, मेरे पास कोई बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर नामी नहीं था, तो मैंने सोचा कि रूप भाई इतने अच्छे कंपोजर हैं, तो ये अगर फिल्म के गाने कंपोज करें और मैं लिखूं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, और उनका नाम भी है। तो मैंने उनसे कहा कि आप फिल्म के गाने क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा भाई मैं इसलिए नहीं करता कि लोगों को पता चलेगा दूसरे म्यूजिक डायरेक्टरों को, तो जो गाने गवा रहे वो भी बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसा होता है हर प्रोफेशन में। तो थोड़े दिन तक तो वो इस बात पर टिके रहे, और मैं उनके अंदर वो म्यूजिक कंपोजर को, जो फिल्म का म्यूजिक कंपोजर होता है, उसको मैं जगा चुका था, मगर
1: जी जी
0: है ना, कहीं ना कहीं उनके भीतर भी था वो, क्योंकि हर म्यूजिशियन का वो सपना होता है
1: जी जी,
0: वो म्यूजिक डायरेक्टर बनने का। तो एक दिन उन्होंने कहा चलो ठीक है यार, लाओ मुखड़े कंपोज करता हूँ। तो मैंने लिखने शुरू किए, उन्होंने कंपोज करने शुरू किए, और हमारा आज भी 500 गानों का बैंक है, जो हमारे गाने रूप कुमार राठौड़ साहब के बैंक में मेरे लिखे हुए
1: दर्ज है।
0: हाँ,
1: और
0: 400-500 गाने होंगे।
1: बहुत सारे नॉन फिल्म एल्बम भी हैं आपके नाम, एक जोगिया हमें याद आ रहा है।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: जोगिया मन, तो वो कैसे बना वो गाना?
0: जोगिया मन तो अभी बात का है, वो एक नया कंपोजर है और बहुत अच्छा सुरीला है, हरीश सगा ने
1: जी
0: उनके साथ किया था मैंने, बहुत अच्छा लड़का है। और हरीश सगने के साथ हमने एक फिल्म की थी, विक्रम भट्ट साहब की एक फिल्म थी, उन्होंने मुझे फोन किया कि शकील भाई मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप गाने लिखें। तो मैं गया उनके यहाँ, तो उन्होंने मुझे हरीश सगने से मिलवाया
1: जी जी,
0: और उनकी एक फिल्म आई थी 1921 जिसमें जरीन खान थी हीरोइन, और वो फिल्म भी बहुत अच्छी चली, हिट हुई पिक्चर, और उसके सारे गाने आप सुनेंगे बहुत अच्छे गाने।
1: थोड़ा सा हम पीछे क्यों चलते हैं, 2004 में जब आपकी पहली फिल्म आई थी, तो वो फिल्म कैसे मिली आपको, पहली फिल्म तक आप कैसे गए? वो तेरा नाम था,
0: वो तेरा नाम था बिल्कुल।
1: तो यहाँ मतलब फिल्मी दुनिया में आपका प्रवेश कैसे हुआ? हम तो एंटर कर चुके हैं लेकिन आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि शायरी की दुनिया से फिल्मी दुनिया में एंट्री कैसे हुई आपकी?
0: ये बात तब की है, 2000 का जो सन है उससे पहले की बात है।
1: अच्छा,
0: तब मैं सूरत में रहता था
1: जी जी,
0: और सूरत से मैं बॉम्बे आता जाता था, पैसे जब तक होते थे यहाँ रहता था, पैसे खत्म होते थे फिर सूरत चला जाता था।
1: अच्छा।
0: फिर पैसे इकट्ठा करता था फिर आता था। तो इस आने जाने में मेरी मुलाकात दिलीप सेन समीर सेन से हुई। हाँ, दिलीप सेन से हुई, और दिलीप सेन के साथ मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। तो दिलीप सेन एक फिल्म कर रहे थे, उसके गाने रिकॉर्ड कर रहे थे सहारा स्टूडियो में, जुल्मी, जुल्मी फिल्म थी अक्षय कुमार।
1: जी जी जी।
0: तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई यहाँ सहारा में आ जाओ और अपनी किताब लेके आना,
1: वहाँ तनवीर खान भी के।
0: हाँ, तो मैं वहीं आ रहा हूँ। तनवीर खान साहब तक आ रहा हूँ मैं। तो मैं सूरत से अपनी एक किताब, मेरी पहली किताब छप चुकी थी धूप दरिया, तो वो 96 में छपी थी वो किताब। तो ये 96 से 2000 के बीच की बात है। तो मैं वो किताब लेके आया
1: जी।
0: और सहारा स्टूडियो में मैं बैठा था मिलने के लिए। तो तनवीर खान साहब की नजर उस किताब पर पड़ी
1: जी।
0: उन्होंने कहा मैं देख सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल देखिए। तो उन्होंने दो चार पेज इधर उधर पलटे, और वो किताब जो थी उसका इंतसाब माँ के नाम था।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो एक शेर जो है वो कैप्शन के तौर पर नीचे था कि अब भी सोते में ऐसा लगता है,
1: अब भी सोते में ऐसा लगता है, क्या बात है,
0: सर के नीचे तेरी हथेली है।
1: ओ क्या बात है।
0: ठीक है, तो ये शेर और कुछ शेर उनको बड़े पसंद आए। उन्होंने कहा यार ये किताब मुझे चाहिए। मैंने कहा ये तो मैं दिलीप सेन जी के लिए लाया हूँ, आप मुझे एड्रेस दे दें तो मैं सूरत जाऊंगा, आपको भेज दूंगा। अच्छा, मैं उनको नहीं पहचानता था, वो मुझे नहीं पहचानता, जबकि तनवीर भाई ने बहुत सारे फिल्मों के डायलॉग, बड़ी कामयाब फिल्मों के डायलॉग लिख चुके थे, इस फिल्म के डायलॉग राइटर भी वही थे। तो मैंने वो किताब उनको सूरत जाके भेजी, और वो किताब पढ़ के इतने इम्प्रेस हुए, वो किताब, वो मेरी शायरी

0: दोस्ती का जरिया बनी।
1: ओह क्या बात
0: हाँ,
1: है।
0: तो हमारी दोस्ती हो गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको फिल्मों में काम करना है तो आपको बॉम्बे आना पड़ेगा, मुंबई में रहना पड़ेगा आपको। अब मैं डरता था कि मैं कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा, कैसे सरवाइव करूंगा, तो इसलिए मैं लेट हो रहा था मुंबई
1: जी
0: आने में। लेकिन फिर मैंने सोचा, यार एक ना एक दिन तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा, तो आज ही क्यों ना उठाया जाए। और इनसे मुझे बड़ी उम्मीदें थी तनवीर साहब से, क्योंकि ये बड़ी फिल्मों के डायलॉग राइटर होते थे, तो
1: जी
0: एक जरिया था। तो मैं सूरत से मुंबई आ गया 2001 फरवरी में।
1: जी
0: और फिर तनवीर भाई के साथ घूमना फिरना, उनके सेट पे जाना, शूटिंग में जाना, ये सब मीटिंग मीटिंग में उनके साथ जाना, ये सब हो रहा था। उसी जमाने में रूप भाई से मुलाकात मेरी थी। तो ये दो लोग थे जिनसे मेरी उम्मीदें जुड़ी थी। तो रूप भाई मेरे गाने कंपोज कर रहे थे। अच्छा, दोनों से एक दूसरे के बारे में मैं बात करता था। मैं इनसे कहता था, भाई रूप भाई को सुन लीजिए, मेरे गाने उन्होंने कंपोज किए हैं। अरे मैं सुन के क्या करूंगा, मैं ना डायरेक्टर हूं ना प्रोड्यूसर हूं। तब वो डायरेक्टर नहीं बने थे,
1: जी
0: बाद
1: जी
0: में डायरेक्टर भी
1: जी
0: बने।
1: जी जी
0: तो ये जो फिल्म थी वो तेरा नाम था, इसके वो डायलॉग लिख रहे थे, और इस फिल्म के डायरेक्टर थे कुक्कू कोयली जी, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे बहुत बड़े आदमी, अलग बिजनेस से, रेमंड के मालिक विजयपत सिंघानिया साहब, उन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की थी। तो बड़े लोग बना रहे थे पिक्चर, अमरीश पुरी साहब का इसमें बहुत बड़ा किरदार था, फिल्म उन्हीं की थी सच पूछो तो, बाकी दो लड़के और दो लड़कियां थी उसमें। तो उन्होंने कहा कि भाई रूप भाई को फोन करो, उनको बुलाओ, मैं सेटिंग कराता हूँ कुक्कू जी के साथ, फिल्म कर रहा हूं मैं। तो मैंने फोन किया रूप भाई को, तो उन्होंने कहा कि मैं तो स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया में कहीं थे वो, तो मैं तो यहाँ हूँ। अरे मैंने कहा कि भाई ये सेटिंग करनी थी तो कब आएंगे, तो कुछ 15-15 दिन बताया कि बाद आऊंगा। तो खैर जब तक वो आते तब तक उस फिल्म के कई गाने दिलीप सेन, समीर सेन जी ने रिकॉर्ड कर
1: कंपोज कर
0: लिए
1: लिए
0: थे,
1: थे।
0: और वो गाने लिखे थे निदा फाजली साहब ने। अब जब रूप भाई आए तो हमारी सेटिंग शुरू हुई। तो उनके पास एक गजल थी कतील शिफाई साहब की, जिसकी झनकार में दिल का आराम था, वो तेरा नाम था।
1: क्या बात है।
0: तो वो तेरा नाम था इसी गजल से लिया गया
1: ओ अच्छा क्या बात है भाई,
0: था।
1: अच्छी
0: वो
1: दिलचस्प
0: मतलब,
1: कहानी बताई
0: हाँ
1: आपने।
0: मतलब पहले से कुछ नाम भरे रहा हो पिक्चर का, लेकिन जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ, ये गजल, तो वो तेरा नाम था कतील शिफाई साहब की गजल से लिया गया। ये नहीं
1: क्या
0: कि
1: बात
0: गजल बाद में, गाना बाद में बना,
1: जी जी
0: पहले जो है गाना आया उसी में से नाम निकाला गया। जैसे मदहोशी थी, उसका नाम मुमकिन था।
1: अच्छा
0: हाँ, मदहोशी के डायरेक्टर तनवीर खान साहब थे, राइटर डायरेक्टर, उसका नाम मुमकिन था। जब हमने ये गाना रिकॉर्ड किया मदहोशी, तो इंदर कुमार साहब थे उसके प्रोड्यूसर, कि उनकी वाइफ थी
1: जी
0: और उनके साले। तो इंदर कुमार साहब ने कहा कि यार इसका नाम बदल दो, मदहोशी कर दो, ये जो गाना रिकॉर्ड किए हो ये टाइटल सॉन्ग बन जाएगा। तो इस तरह से मुमकिन हटा के
1: मधोशी बन गया।
0: मुमकिन नाम से उसका प्रचार भी शुरू हो गया था,
1: वाह
0: बाद में वो मुमकिन हटा के मदहोशी किया गया। तो इस तरह से वो टाइटल आया, वो तेरा नाम था। फिर उसमें मेरे दो गाने लिए गए, और उसमें कतील शिफाई साहब का भी गाना है, निदा फाजली साहब का है, मतलब दो बड़े शायर और गीतकारों के साथ मेरी शुरुआत हुई
1: जी
0: फिल्म
1: जी
0: में। उसमें एक गाना था जो मेरी जिंदगी का पहला गाना, वो ये था कि सुबह हो रही है, भोपाल का माहौल है, 1947 मुल्क आजाद हुआ है, और भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया जा रहा है।
1: जी जी
0: ये उस टाइम की कहानी थी, और समद खान कोई वहां के बड़े क्लासिकल सिंगर थे। तो सुबह हो रही है और पूरा उस जमाने की एक्टिविटी थी वो सब हो रहा है, और समद खान वो छत पे रियाज कर रहे हैं अपने महल के, और उनकी बेटी जो फिल्म की हीरोइन है वो कहीं वादियों में गा रही है। तो ये सिचुएशन थी, और फिल्म इसी गाने से शुरू होती है। तो वो मैंने लिखा था, मुझे पसंद है वो
1: जी
0: जो
1: जी
0: राइटिंग है, और वो गाना इतना, मतलब अलका जी ने गाया उसको, और उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने अपनी माता जी को फोन करके बुलाया और उनको सुनाया कि देखो आज भी ऐसे गाने लिखे जाते हैं। फिर वो गाना रिकॉर्डेड रूप भाई ने ले जाके लता जी को सुनाया, है ना,
1: जी
0: दीदी मैंने ये मेरी पहली फिल्म शुरू हुई है, ये गाना रिकॉर्ड किया मैंने। तो उन्होंने गाना सुना लता जी ने, तो डांटा उन्होंने प्यार से,
1: कि मुझे
0: अरे ये गाना तो मेरा था, तूने मुझसे क्यों नहीं
1: क्या
0: गवाया।
1: भैया बड़ा

0: हाँ, तो ये गाने में जो एक तो कंपोजिशन और दूसरे जो इसके लिरिक्स हैं के पूरे साहित्यिक, उसका मैं मुखड़ा सुनाता हूँ आपको।
1: जी
0: सुबह हुई दिन निकल रहा है, सुबह हुई दिन निकल रहा है, नदी के तट पर नहा के सूरज सुनहरे कपड़े बदल रहा है।
1: क्या बात है,
0: सुबह हुई दिन निकल रहा
1: वाह बहुत खूब। हाँ
0: है। आपके उदयपुर के रेडियो स्टेशन
1: हाँ
0: पर ये सुबह इसी गाने से होती है,
1: क्या
0: डेली ये
1: बात
0: गाना बजता है।
1: है।
0: हाँ,
1: हम यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए?
0: मधोशी का टाइटल सॉन्ग सुना दे, मधोशी है मधोशी है।

0: शकील साहब, एक बहुत जरूरी सी बात है और आपके करियर में भी बहुत ये उम्दा बात है, खास बात है। अपने श्रोताओं को बता दें कि आपने कहीं बहुत सारी जगहों पर, आपके बारे में पता है कि बहुत ऊंचे दर्जे की तालीम नहीं ली, स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला आपको, लेकिन एक ऐसी तालीम है जो आपके भीतर आपने खुद से ली होगी। राम के वनवास पर आपकी बहुत सारी नज्म है, जिस पर किताब भी आई है और जिसका आप अक्सर जिक्र करते हैं, तो ये कहाँ से आइडिया आया, कहाँ से खोज की आपने, इतने बड़े फलक पर आपने कैसे कुछ कोशिश की, बताइए।
1: मेरी उर्दू में 8 किताबें हैं।
0: जी
1: मैं साहित्य से, उर्दू साहित्य से ही फिल्मों में और मंचों पर आया। 20 साल तक मैंने सिर्फ साहित्य लिखा, साहित्य के मैगजीन में छपता रहा। मैं बाद में इधर आया फिल्मों की तरफ और मंचों की तरफ। तो ये जो काम है मेरा, ये मैं जंगल पर लिख रहा था, जंगल पर लिख रहा था, और लिखते लिखते उसी दरमियान उर्मिला का जो किरदार है वो कहीं से मेरी जिंदगी में आया। उर्मिला जो लक्ष्मण की बीवी है, लक्ष्मण की जो पत्नी
0: जी
1: है,
0: जी
1: उस किरदार ने मुझको झकझोर के रख दिया, मुझे हिला दिया उस किरदार ने, उसके बलिदान ने, उसकी कुर्बानी ने।
0: कि वनवास होता है लक्ष्मण को 14 वर्ष का।
1: हाँ, और अहिल्या, ये दो ऐसे किरदार हैं जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत बेचैन किया मुझे। और उसी जमाने में जब मैं अहिल्या के दर्द से दो चार था, उसको जी रहा था, और जब ये नज्म हुई उर्मिला, जब ये नज्म मैं लिख चुका, तो मुझे लगा कि यार जो रामायण है
0: जी
1: वो पूरी घटना जो है वो जंगल में है, वनवास जो राम जी का है 14 बरस का, तो क्यों ना रामायण के किरदारों पर नज़में लिखी जाएं। तो मेरी जो रामायण है वो वाल्मीकि जी से लेके अब तक जितनी भी रामायणें लिखी गई हैं,
0: तुलसीदास की
1: तुलसीदास की,
0: रामचरितमानस।
1: जी हाँ, तो और भी हमारे दूसरे लोगों ने लिखी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी का काम है इस उर्मिला पे।
0: उर्मिला सखी वे मुझसे
1: हाँ
0: कहकर
1: हाँ
0: जाते,
1: हाँ हाँ
0: बहुत बढ़िया।
1: तो सभी ने मतलब कहानी के माध्यम से कहानी कही है। मैंने एक नया रास्ता निकाला, पात्रों के जरिए से, किरदारों के जरिए से मैंने रामायण कही है मैंने कहानी। तो मैंने तकरीबन सभी किरदारों पर नज़में लिखी, एक के बाद एक, जीता गया जीता गया और
0: जी
1: लिखता गया। इस तरह से वो पूरी एक अलग सी रामायण हुई। और पहले मैंने उसका नाम सोचा था जंगल यात्रा, उस किताब का, क्योंकि जंगल पे काम कर रहा था मैं, तो उस किताब का एक बड़ा हिस्सा जंगल भी है, रामायण और जंगल दोनों है उसमें। तो वो मेरे लेखन क्षेत्र में आता था, मेरा जो टॉपिक था जंगल, उसमें वो वनवास आता था वो। तो जब ये रामायण उसमें शामिल हो गया, तब मुझे, मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसका नाम वनवास रख दिया जाए, उससे बेहतर क्या नाम हो सकता है। अगर जंगल पर किताब है, रामायण पर किताब है, तो वो जो है इस तरह से उसका नाम वनवास रखा गया। और वो किताब इतनी सराही गई है, उर्दू में उसको कई अवार्ड मिले, और उर्दू के जितने भी बड़े क्रिटिक्स और पोएट हैं उर्दू साहित्य में, तकरीबन सभी ने उस किताब पर आर्टिकल्स लिखे हैं, लेख लिखे हैं, मजामीन लिखे हैं। तो किताब पर किताब का आ जाना बहुत बड़ी बात होती है, मतलब उस किताब पर इतने आर्टिकल लिखे
0: समीक्षात्मक
1: गए
0: किताब।
1: कि वो अलग से एक किताब आई है, उसको प्रोफेसर कौसर मजहरी साहब हैं जो जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उर्दू के, उन्होंने वो किताब कंपाइल की है।
0: क्या बात है।
1: हाँ, तो इस तरह से उस किताब पर किताब आई, और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान के राइटरों को भी उस किताब ने बहुत इम्प्रेस
0: जी।
1: किया। वहां पर एक बड़े राइटर थे, अभी उनकी डेथ हुई है, जो फिल्म के भी राइटर थे, साहित्य के भी थे और मंचों के भी थे, जिस तरह हमारे यहाँ जावेद साहब है, गुलजार साहब है, इस तरह का वो नाम थे, अमजद इस्लाम अमजद साहब,
0: जी।
1: अभी इंतकाल हुआ उनका। उन्होंने इस पर आर्टिकल लिखा है,
0: जी
1: और किस तरह से मतलब हिंदू माइथोलॉजी और रामायण को लेके जो उनकी मालूमात थी वो भी कमाल है, वो जो लिखा है उन्होंने, बहुत अच्छा लिखा है। ये किताब हिंदी में जब आई

0: तो पिछले 3 सालों से बेस्ट सेलर है, कविता की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में एक है ये।
1: क्या बात है,
0: पिछले 3 साल से लगातार। और अभी को दैनिक जागरण ने बेस्ट सेलर अवार्ड दिया गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथ से मुझे।
1: क्या बात है,
0: तो हाँ बहुत शुक्रिया
1: और बहुत बढ़िया बात कही है। और आपके मुशायरों का जिक्र तो हुआ, शुरुआती मुशायरों का, लेकिन बाद के मुशायरों में हमने खुद देखा है, मेरी खुशनसीबी है कि हमने आपको खुद देखा है और कलिंगा फेस्टिवल में देखा, प्रयागराज में हमने आंखों से देखा था जहां अनुभव सिन्हा जी भी उपस्थित थे, और आपकी जो शायरी थी वो आपके खजाने से निकल रही थी और पूरा हॉल खचाखच भरा था। ऐसे तमाम अनुभव है, तमाम वाक्यात हैं जिनकी बातें हम आपसे और फिर कभी करेंगे। आज तो बस इतना हम कहना चाहते हैं, धुआं धुआं है फजा, रोशनी बहुत कम है, सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है। आपके ये अल्फाज हैं, आप क्या कहेंगे, आप विविध भारती के श्रोताओं को क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे चलते चलते?
0: मैं यही कहूंगा कि अभी आपने जो सुनाया है, सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है, तो प्यार बहुत जरूरी है। और दुनिया में कुछ भी हो जाए, ये जो मोहब्बत का जज्बा है ये हमेशा बड़ा रहेगा, बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा। तो मोहब्बत कीजिए, सबसे पहले तो खुद से मोहब्बत कीजिए।
1: कुछ शायर एक शायर से हम उम्मीद करते हैं, शायरी में ही कुछ बोले शेर के साथ
0: जी,
1: कोई अशार।
0: मैं अभी इधर एक नई गजल कही है मैंने, उसके 2-3 शेर सुना देता हूँ, और उसमें एक शेर है खास तौर से उसके लिए मैं ये शेर सुना रहा हूँ कि उसमें ये भी एक शेर है, सीख है कि भाई ठीक है, ऊंच नीच होती है, कुछ हमारे अलग अलग सोच होती है, लेकिन उस सब को हटा के आगे की तरफ बढ़ते रहो।
1: क्या बात है,
0: मोहब्बत करते रहो। कि आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ, आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ।
1: क्या बात है,
0: मैं हो गया हूँ उसका, वो मेरा नहीं हुआ।
1: वाह वाह वाह,
0: मैं हो गया हूँ उसका, वो मेरा नहीं हुआ। वो शेर ये है जो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, वो आप आगे बढ़े। सांपों को मैंने रहने दिया उनके हाल पर।
1: क्या बात है,
0: सांपों को मैंने रहने दिया
1: उनके हाल,
0: उनके
1: पर।
0: हाल पर मंत्र भी सीख कर मैं सपेरा नहीं हुआ।
1: वाह वाह वाह,
0: ठीक है, मैंने उसे बदला नहीं लिया, मैंने मंत्र आता था मुझे, लेकिन ठीक है यार, तुम तुम्हारे रास्ते, मैं अपने रास्ते। इसका एक शेर आखिरी खास तौर से कि देखिए, ज्ञान जो है ना
1: जी,
0: शायरी में ज्ञान की बहुत जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आपके पास ज्ञान भी होता है अलग अलग, तो वो शेर में आता है रचना के तौर पर, रचनात्मक तौर पर आता है, तखलीकी तौर पर, तो बहुत असर करता है। तो एक महाभारत का एक इल्म है, एक ज्ञान है जो इस शेर में आता है, मैं सुनाता हूँ। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है।
1: क्या बात है, ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है। वाह,
0: ये सीख है हम सबके लिए, ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है
1: जी।
0: लड़ते रहो शकील, अंधेरा नहीं हुआ।
1: क्या बात है, वाह वाह। तो अब अपने श्रोताओं से, हमारा तो दिल नहीं कर रहा है कि हम इजाजत लें, और लग रहा है कि आपसे गुफ्तगू जारी रहे, और बहुत सारी अभी बातें हैं जो बाकी हैं आपसे पड़ताल करनी। आजमगढ़ जैसे छोटे से शहर से आप मुंबई जैसे महानगर में आकर और इतना नाम रोशन किया है, शायरी की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में आपने नाम रोशन किया है, इसके लिए आपको पूरे विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद हम दे रहे हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब। नमस्कार
0: जी।
2: जाने माने शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: उनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ

0: किसान वीरां ते भैणां दा प्रोग्राम किसान वाणी लैके हाजिर हां। मैं अनुमीत कौर ते मेरे वल्लों आप सब नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। अज प्रोग्राम दौरान जानकारी दा विषय है सौणी दीआं फसलां दे विच कीड़े मकौड़ियां दी रोकथाम बारे। सो जिवें कि मौसम बदलदा है उस हिसाब दे नाल फसलां ते जिहड़ियां कि साडीआं मुख फसलां ने जिवें आपां गल करिए झोना, नरमा, कपाह, मक्की या कमाद दी, तां इहनां ते किस तरीके दे केड़े केड़े कीड़े मकौड़ियां दा हमला हुंदा है ते इन्हां तों आपां किवें फसल नूं बचा सकते हैं। सो अज दे इस विषय बारे साडे नाल जानकारी सांझी करनगे साडे अज दे माहर डॉक्टर सुनीत कौर पंधेर जी, जिहड़े कि प्रोफेसर ने खेतरी खोज केंद्र फरीदकोट विखे। सो डॉक्टर सुनीत पंधेर जी, थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम दौरान।
1: बहुत बहुत धन्नवाद जी अनुमीत कौर जी।
0: जी ते साडे श्रोतियां नूं वी दस दईए कि अज दे इस विशे दे संबंध विच अगर ओह कोई वी सवाल पुछना चाहुंदे ने तां साडे स्टूडियो दा नंबर डायल कर सकदे ने 0164-2240-331। सो आपां सवालां दी लड़ी शुरू करदे हां जी। सब तो पहला आपां गल कर रहे हां, आपां किसे खास फसल दी गल नहीं करदे, आपां जनरल जिहियां गल्लां करदे हां कि कीड़े मकौड़ियां तों आपां फसल दी किवें बचा कर सकदे हां ते इहदे लई कोई जिवें आपां कहीए खास नुक्ते ने ओह साडे किसान वीरां नाल तुसीं जरूर सांझे करो।
1: हाँ जी, जे आपां मुख फसल बारे गलबात करिए उस तो पहला आपां कुछ जिहड़े आम नुक्ते ने जिहड़े हरेक फसल दे उपर आपां अपलाई कर सकदे हां जां उहनूं अमल च लिया सकदे हां, उह हैगे ने कि चार पंज नुक्ते ने। जे आपां पहलां गल करिए कि किसी भी फसल ते किसी भी कीट प्रबंध वास्ते पहला

श्रोत्यो नमस्कार, मैं सुखमान हाजिर हाँ लैके प्रोग्राम गल्लां चों गल। श्रोत्यो प्रोग्राम गल्लां चों गल तहत तुसी सुनोगे आकाशवाणी FM बठिंडा दी विशेष पेशकश नवे धार्मिक प्रोग्राम हर अकाल उस्तत दे तहत एक विशेष सिलसिला श्री मद भगवत गीता यथारूप वाचक निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा।

वैदिक आदेशानुसार आतताई छह प्रकार के होते हैं। विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता जी का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में

बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये है उसके पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पोत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार ना करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से सब जनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना अति उत्तम होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थाई नहीं है तो फिर अपने सब जनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति श्री कृष्ण जी को ये बताना चाह रहा था कि वह उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं।

संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित से रथ के आसन पर बैठ गया। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, क्योंकि वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक और रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्म ज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। श्रोताओं, इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।

0: जरूर सुनो आकाशवाणी FM बठिंडा दा प्रोग्राम श्रोता मंच ते देओ अपने नेक सुझा। प्रोग्राम दा समा हर मंगलवार दोपहर 1:15 तो 2 बजे तक अते शुक्रवार दोपहर 12:10 तो 1:10 तक।
1: श्रोते इस दे नाल ही प्रोग्राम गल्लां चो गल्ल दा वेला इत्थे मुकदा ही। दिओ आग्या नमस्कार।